मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि, तदनुसार 26 मई 2026 प्रातः के 5:56 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel.

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। सभा की शुरुआत करेंगे रोज ही की तरह समाचारों के साथ, हिंदी और अंग्रेजी में। समाचारों के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दूध में उपस्थित होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी स्थानों पर उपस्थित ईश्वर नजर नहीं आता। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको स्वयं पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर, आपके हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए केवल सिर का झुकना ही काफ़ी नहीं होता। उनकी कृपा तब बरसती है जब आप सिर के साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। ईश्वर सत्य हैं और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बने रहने पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है।

जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वह हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी ओर हजार कदमों के साथ आते हैं। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपके लिए जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं।

भगवान के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसे आपको स्वयं ही अनुभव करना होता है। ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है। हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं। मन शांत और सरल हो जाता है। हम अपने समय और धन को अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे हमें जीवन में सफलता और प्रसन्नता मिलती है। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा आ रही हो, तो ऐसे में अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाएं। ऐसे विकार केवल ईश्वर के मनन से ही दूर हो सकते हैं। यदि आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: जब भी हम आज का विषय है शिक्षा, जब भी हम शिक्षा के संदर्भ में विचार करते हैं, दो धाराएं हमारे सामने आती हैं, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जिसमें ज्ञान विज्ञान और भौतिकता के विकास की सारी दिशाएं हमारे सामने हैं और आज का मानव संपूर्णतया इसी को सब कुछ मान करके चल रहा है। विचार करें, क्या विद्याओं का इतिहास मात्र 100-200 वर्षों का ही है? क्या ज्ञान की सीमा

0: तक निर्धारित हैं? नहीं, भारतीय विद्याएं या जिसको हम पराविद्या के नाम से जान सकते हैं हजारों वर्ष पुरानी हैं। आज गणित की बात करते हैं, हमारे सामने पाइथागोरस आता है। दर्शन की बात करते हैं, हमारे सामने सुकरात आता है। विज्ञान की बात करते हैं, हमारे सामने आइंस्टीन आता है। बड़ा विचित्र लगता है, क्या भारत में कोई दार्शनिक नहीं हुआ? क्या भारत में कोई गणितज्ञ नहीं हुआ? क्या भारत में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न हमें सोचने को विवश करते हैं कि यदि हम भारतीय ज्ञान शाखाओं से परिचित होते तो हमारा ज्ञान इतना सीमित नहीं होता, संकुचित नहीं होता। भारतीय विद्या में तो उस शिक्षा की बात कही गई है जिससे हम अमृतत्व को प्राप्त कर सकें, मृत्यु से भी पार पा सकें और अपने आप को जान सकें। वैदिक प्रसंग है जब याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं सारी संपदा का बंटवारा कर देता हूँ। उस समय मैत्रेयी कहती हैं, येनाहम नामृतम स्यामे तेनाहम किम कुर्मह, उससे मुझे क्या जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त न कर सकूं। वस्तुतः जीवन का सार केवल भौतिक विकास में नहीं, उसके साथ साथ में अपने आप के विकास में निहित है, अध्यात्म के विकास में निहित है। और उस दिशा में यदि हमारा चिंतन जागृत होता है तो हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और हमारा अपना अस्तित्व क्या है उसके प्रति भी एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का चिंतन है कि आज तक हम एनर्जी की खोज करते रहे बाहर के जगत में, ऑब्जेक्ट पर ही रिसर्च करते रहे, लेकिन हमें अपने आप के अस्तित्व के लिए रिसर्च करनी बाकी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में प्रारंभ से ही यह चिंतन रहा है। उस चिंतन को प्राप्त करके हम नया नवनीत प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य यह भी है कि आज भी उन भारतीय विद्याओं के ज्ञाता हमारे सामने उपलब्ध हैं और अनेक ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी वे हमें प्रदान कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं या आज की भाषा में कहें तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ऐसे ही आयाम हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक विकास भी कर सकता है, मानसिक विकास भी कर सकता है, बौद्धिक विकास भी कर सकता है और भावनात्मक विकास भी कर सकता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है हम उसे गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह अपूर्ण है, क्योंकि भावनात्मक विकास का पक्ष वहाँ बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक वैज्ञानिक है, वह भी टेंशन में जीता है और उस टेंशन के चलते कई बार सुसाइड जैसी स्थितियाँ भी उसके सामने आ जाती हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में अंतर क्या? अंतर होना यह चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने आवेगों पर, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख सकें, भावनात्मक विकास कर सकें, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जागृत कर सकें। यदि इतना प्रयास हमारा होता है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमने प्रकाश को प्राप्त किया है, शिक्षा के माध्यम से सही दिशा को प्राप्त किया है। ओम आरा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7

कर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते, जिसमें जानकारी देंगे नरमे की फसल में सामयिक कार्य। मानसगान का समय रहेगा 7:20। आज सुनवाएंगे भाग संख्या 255। सुप्रभात में आज बात करेंगे पेड़ पौधों का महत्व, बच्चों की बात को महत्व दें, जो बीत गई सो बात गई। समय होगा 7:30। कुछ भजनों का आनंद उठाइए 8:45 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत रामजस वाल्मीकि और पार्टी को सुनिए 9:10 पर। मुरमंगल कार्यक्रम में फिल्म संगीत 9:30 पर और कार्यक्रम गा मेरे मन गा 10:00। 11:00 फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे और कार्यक्रम एक ही शीर्षक से 12:05 पर। 12:50 पर खेत खलिहान में जानकारी देंगे मूंगफली की उन्नत खेती। 1:05 पर घर आंगन में बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए नारियल के फायदे, रक्तदान महादान, दहेज प्रथा एक अभिशाप, लू से दिलाएं राहत, जौ की राबड़ी। उर्दू सर्विस के प्रसारण 3:00 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। युववाणी में आज बात करेंगे विचार, जीवन का आधार, फिजूल खर्ची से बचाव, राजस्थान की सभ्यताएं, भारत की अपवाह प्रणाली और आज का इतिहास। सराय की 6:05 पर और 7:00 चौपाल में बात करेंगे राजस्थानी रीति रिवाज, अरहर की खेती, गायों की देखभाल, साथ ही साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी देंगे। भक्ति संगीत 7:45 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से 8:00 आप हमारे केंद्र से सुन पाएंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम गोरबंद आप सुन पाएंगे 9:15 पर और गीत गंगा 10:00। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ. एन. राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एच.डी. कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कण्ठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखण्ड, उत्तराखण्ड राज्येषु अपि भवितुं सम्भाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत अमरी

0: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पिछू पहला खेत की तैयारी, बीज की किस्म, बीज की मात्रा, बुआई को वक्त, सिंचाई, उर्वरक की मात्रा, उर्वरक देने को वक्त, निराई गुड़ाई, खरपतवार और रोग नियंत्रण और बांसू बचाव, ये सारी बात जकी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात करा भूमि के बारे में, खेत की भूमि किसी को होनी चाहिए तो नरमें की खेती खातर मध्यम किस्म की भूमि अच्छी मानी जाए। और गहरी दोमट उपजाऊ भूमि जकी के माँ जल धारण की क्षमता अच्छी हुए और जल निकास की भी अच्छी व्यवस्था हुए और पीएच मान जक है वो 5.5-8.5 के बीच आला हुए बात चौकी मानी जाए। और किसान भाइयों जकी भूमि के माँ पानी कट्ठो हुए या लवणीयता क्षारीयता हुए या रेतीली बलुई मिट्टी हुए या जल क्रांत भूमि हुए बा भूमि जकी नरमे खेती खातर अच्छी कोनी मानी जाए। माटी की जांच अपन जरूर करवा लेनी चाहिए जके शो अपन पतो लाग जाए भी माटी के अंदर के उर्वरक जका है बांगी जरूरत है और किसे किसे उर्वरक की जरूरत कोनी। किसान भाइयों आगे अगर बात करा कि नरमे की बुआई खातर सही वक्त की तो इनकी बुआई को जको सही वक्त है वो 1 मई से लेके 20 मई तक हुए। इनके सागे सागे बात करा अगर किस्म की तो बाजार के मां बिया तो खूब सारी किस्म मिले जकी के चौकी पैदावार देवे पर जकी

अपन पतो लग जाए भी मट्टी के अंदर के उर्वरक जका है बांगी जरूरत है और किसे किसे उर्वरक की जरूरत कोनी। किसान भाइयों आगे अगर बात करा कि नरमे की बुआई खतर सही वक्त की, तो इनकी बुआई को जको सही वक्त है वो 1 मई से लेके 20 मई तक ही हुए। इनके सागे सागे बात करा अगर किस्मा की, तो बाजार के मां बिया तो खूब सारी किस्मा मिले जकी की चौकी पैदावार देवे, पर जकी मुख्य किस्मा है बंग मां है राशि 775, राशि 776, US 51, US 71, 71 72 72 73, 155, 177 नंबर बीज और 6588 किस्म जकी है बाजार के मां चलन के मां खूब है। और बिंगे सागे सागे और भी चौकी चौकी किस्मा मिले है जकी आप कृषि वैज्ञानिक कहूँ संपर्क कर गए और चयन कर सका। किसान भाइयों बात करें बिजाई की भी, बिजाई करने को के तरीको है, तो रबी की जब कटाई हो जाए बिंग बाद में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर गए और भूमि ने छोड़ देना चाहिए जखे शु भूमि माँ जका भूमिगत कीड़ा मकोड़ा है वे नष्ट हो जाए। और बाद में 2-3 जुताई एरो या त्रिफाली शू कर गए और सुहागो मार देना चाहिए और कम आंतरे पर 2 पलेवा या रोनी की सिंचाई जकी है वह कर देनी चाहिए। किसान भाइयों चौकी पैदावार लेने खातर माटी जकी भुरभुरी होनी चाहिए और पहला शू बच्चेड़ा जका डंठल है वे बिंगमान नहीं होना चाहिए और बिजाई जकी है वह बिजाई मशीन शू सुबह के टाइम करनी चाहिए जके शू किए कि भूमि की जकी नमी है उड्डे को नहीं। बिंग अलावा किसान भाइयों बुआई शू 15 से 20 दिन पहला 4-5 टन गोबर की जकी सड़ेड़ी खाद है वह 1 बीघा के हिसाब शू दे देनी चाहिए जके शू मिट्टी की पोषकता और जल धारण जकी क्षमता है बिंग मां बढ़ोतरी हो सके। किसान भाइयों इन सागे सागे आप बात करें भूमि उपचार की, तो दीमक और भूमिगत कीड़ा की रोकथाम करण खातर 6 किलो क्यूनाल फोस 1.5 सैकड़ा चूर्ण 1 बीघा के हिसाब से जमीन के मां बुआई से पहला मिला के दे देना चाहिए और जड़ गलन रोग की रोकथाम करण खातर बुआई से पहला 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जिंक सल्फेट जगह जमीन के मां डाल देना चाहिए। किसान भाइयों इन अलावा 50 किलो गोबर की खाद और 2.5 किलो ट्राइकोड्रमा हरजेनियम मिला गए 4-5 दिन छिया में रख गए 1 बीघे के हिसाब से अपन एक सार रूपों जमीन के मां बिखेर देना चाहिए। तो नरमा 1 बीघे के हिसाब से अपन 450 ग्राम बीज जो है वो सही रहे और अगर खटे किए की पौधा नष्ट होने की संभावना लगे तो बटे की 150 ग्राम फालतू ले लेना चाहिए। बूंटे शू बूंटे की जकी छेती है बस 60 से 90 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए। खाद और उर्वरक की अगर आप बात करा तो 12.5 किलो नाइट्रोजन और 62.5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जकी है वह बुआई के टाइम दे देनी चाहिए और इनके अलावा 12.5 किलो जकी नाइट्रोजन है वह पहली सिंचाई के वक्त और 12.5 किलो नाइट्रोजन दूसरी सिंचाई के वक्त 1 बीघे के हिसाब से अपन दे देनी चाहिए। किसान भैया इन सागे सागे बात आवे सिंचाई की, तो पहली सिंचाई जकी है वह बुआई के 30 से 35 दिन के बाद में करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई जकी है वह पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन के बाद में कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों आ बातों को अपन ध्यान रख गए और नरमा भी अगर बुआई करांगा तो चौकी पैदावार ले सका और चौकी पैदावार ले गए अपने परिवार ने खुशहाल बना सका चौखू मुनाफो कमा सका। आज खातर इतो ही अजय भाई ने देवा गया राम राम।

अरे समुमली ओ साईबो मारी साती धड़का खा साजन गणी।

सकरी तो शामा मिलिया सेन अरे हसी आपने बोला नहीं जी हरी

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं।

भागता छिपता मृगरूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान। आज हमने आपको सुनवाया भाग संख्या 255। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

दोस्तों, ये धरती जहां हम रहते हैं उस पर प्रकृति का शासन चलता है। हम मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कभी जीत नहीं सकते। कोरोना काल में भी हमने देखा किस तरह से कुदरत ने जीत हासिल की। हमें एक तरह से घरों में बंद कर दिया गया, तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली। प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वनस्पति। वनस्पति वो जो जीवन का आधार है सभी पशु पक्षियों के लिए और मनुष्यों के लिए। सबसे जरूरी चीज पेड़ पौधे, जिन्हें संरक्षण की बेहद आवश्यकता है। हमने अपनी जरूरतों के चलते, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे दवाई हो या कुछ और हो, कुल मिलाकर अपने फायदे के

चलते हमने पेड़ पौधों का बड़ा नुकसान कर दिया है। आबादी बढ़ाने की होड़ में ईंट पत्थरों के मकान बनाने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए, सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए, कितने ही ऐसे काम हैं जिसके लिए सबसे पहले पेड़ कुर्बान किए जाते हैं, जबकि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ हैं तो वर्षा है, पेड़ हैं तो ऑक्सीजन है, पेड़ हैं तो फल हैं। पेड़ों को ना सिर्फ इसलिए बचाया जाना ज़रूरी है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं या हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बल्कि प्रकृति का एक संतुलन है जिसे हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं। कुछ साल पहले हुआ था, चीन ने गोरैया पक्षी के बारे में सोचा कि ये बेकार सा पक्षी है और हम जितना अनाज खाते हैं उससे ज़्यादा तो गोरैया खा जाती है, तो उन्होंने एक अभियान शुरू किया कि गोरैया को मारा जाए। तकरीबन साल भर, 2 साल वो अभियान चलता रहा और गोरैया पक्षी को वो लोग मारते रहे। अब ऐसा असंतुलन पैदा हुआ, इतने कीड़े मकोड़े हो गए कि गोरैया पक्षी तो कितना अनाज खाती थी उससे 10 गुना अनाज कीड़े मकोड़े खा गए। इसी तरह भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक बार चूहे मारने की बात उठी थी और बहुत से लोगों ने मारे भी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो चूहे की पूंछ जमा कराने पर कुछ पैसे इनाम में मिला करते थे। तो इस सबसे बड़ा भयंकर प्रकृति असंतुलन पैदा हुआ, सभी परेशान हुए। अब हम पेड़ पौधों को जिस तरह से काट रहे हैं, जिस तरह से वनों का हम दोहन कर रहे हैं, बहुत जल्द ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमें फिर से पेड़ लगाने पड़ेंगे और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये समय आ रहा है, आ चुका है, हमारे सामने है। तो ध्यान रखें, प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, यथासंभव पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। सुनते हैं एक गीत, फिर बातें और करेंगे।

दोस्तों, हम इंसान हैं और हमारी समस्या ये है कि हमें लगता है कि हमें सब पता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हमें अपने अधिकार का पूरा विश्वास हो तो समस्या को समझने में पर्याप्त समय नहीं लगता। जब हम तनाव में हों या समय की कमी हो तो हम बच्चों के विकास में प्रश्नों से अधिक प्रक्रिया के महत्व को कम करते हैं। बच्चों की बात सुनना, समझना, उनकी बात का उसको महत्व देना, उस इस चीज़ को भूल जाते हैं। कहने का अर्थ है कि उनकी बातों को ध्यान से अपना मुंह बंद करके बच्चा जो कह रहा है, जिस तरह से कह रहा है, उस पर पूरा ध्यान दे, केवल शब्दों को समझने के लिए नहीं, उसकी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए भी। जब आपका बच्चा आपसे किसी कठिन बात पर चर्चा कर रहा हो या भावुक हो तो शांत रहें। अपना केवल वही शब्द और उसके सैद्धांतिक अर्थों को देखें कि बच्चा किस तरह बोल रहा है। हो सकता है वो किसी प्रकार के उत्पीड़न की या किसी की शिकायत कर रहा हो, कुछ समस्या हो बच्चे की। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो समस्या बच्चे के लिए बहुत बड़ी होती है, असल में वो कोई समस्या होती ही नहीं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो टॉफी के छिलके को प्रॉपर्टी मान लेते हैं। तो लेकिन उन्हें शांत करना ज़रूरी है, उनकी बात को सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे बीच में एक गैप बनने लगता है। बात का महत्व तो बच्चे को बाद में समझ आ जाता है, लेकिन जो गैप बन गया वो कभी मेंटेन नहीं हो पाता। बच्चे की बात सुनने से उन्हें शांत होने में मदद मिलती है। आमतौर पर बच्चों को सिर्फ अपनी बात ही बतानी होती है, उन्हें उसका समाधान नहीं चाहिए होता। जब बच्चा अपनी बात करता है तो वो आपसे अंदरूनी रूप से कनेक्ट करता है। ऐसा देखने में आया है कि जिन बच्चों की बातें सुनी गईं बचपन में, उनमें एक्सप्रेस करने की क्षमता कहीं अधिक पाई गई उन बच्चों के अलावा जिनकी नहीं सुनी गई। तनाव में अगर आपका बच्चा है, किसी भी कारण से हो, बच्चों को क्या है, स्कूल के होमवर्क का भी तनाव, उनके पास तो यही तनाव है ना। तो बड़ा ध्यान से, क्योंकि अब सबके पास बच्चे एक एक हैं, कहीं दो हैं, है ना, तो बहुत ध्यान से अपने बच्चे की परवरिश करें। आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय का बोझ इन्हीं के कंधों पर है। खैर, सुनते हैं एक गीत, फिर बातें और करेंगे।

0: जो बीत गई सो बात गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, पुट द ग्लास डाउन, है ना। यदि हम एक ग्लास को, पानी से भरे हुए एक ग्लास को हाथ में पकड़े रखें, तो कितनी देर पकड़े रह सकते हैं? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, या हो सकता है 2 घंटे। हमने क्यों पकड़ रखा है पानी का गिलास? गिलास खाली कर दिया, फिर भी गिलास हमने पकड़ रखा है। हमने गिलास को नीचे नहीं रखा, हमारा हाथ दर्द करने लगा, थक गया, लेकिन हमने गिलास नीचे नहीं रखा। इसी तरह हम कुछ बातों को दिल से लगा लेते हैं, कुछ बातों को खुद को परेशान कर लेने देते हैं। पुट द ग्लास डाउन, बातों को जाने दीजिए। बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़ा है, ये हमारे घर के आगे क्यों आया है, ये हमारे घर को क्यों देख रहा है ना। गली है, सड़क है, लोग चलते हैं, कोई हॉर्न बजा गया तो उसने मेरे पीछे हॉर्न क्यों बजाया, है ना। छोटी छोटी सी बातें हम लेकर के परेशान होते रहते हैं, जबकि इस कार्य को करने वाले व्यक्ति के दिमाग में ऐसी कोई बात होती ही नहीं, है ना। तो हमें कभी कोई कुछ कह देता है, हो सकता है कुछ बुरा भी कह जाए, लेकिन फिर भी हमें उन बातों को भुला देना चाहिए। मन में किसी प्रकार की टीस नहीं रखनी चाहिए, किसी प्रकार की कसक नहीं रखनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा दोस्तों, प्रेम जिंदगी है, प्यार जिंदगी है, आपसी संबंध जिंदगी है। बातें और करते, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा, तो आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो आइए दिल्ली चलते हैं और सुनते हैं आज के समाचार।
1: थे वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश

0: मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन

0: उत्तराखंड शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी।

0: जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार।

0: पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good.

0: ministers meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कली महमद, पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के तीन दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुलकाहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुलअक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उजराए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उजराए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।

0: इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। डीजीसीए ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83.09 रुपये फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में

0: एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर टू में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दिगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी एहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एजे शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अजम का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अल्कवामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सैयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में, आज सुनिए कुछ भजन।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

बीकानेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाल हवाई अड्डे पर उनकी अगुवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत

0: करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा उर्वरक की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
2: मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा, 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे, इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है, मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके, इसलिए आम जन से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
0: जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखाकर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
3: नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला।

0: था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत एससी एसटी लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांके वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: अलवर के सरिस्कार टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने दो शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17 बाघिने और 26 शावक शामिल है। नए शावकों के नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर पॉइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर का दिन और 33.3 डिग्री के साथ हनुमानगढ़ के संगरिया की रात सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। वहीं करौली, दौसा, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले 3 दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे। सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज सुनिए लोक गायक रामजस वाल्मीकि के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज आपने लोक गायक रामजस बाल्मीकि एंड पार्टी के गाए कुछ लोक गीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म माचिस का गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म वारिस का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वरों में, गीत वर्मा मलिक का और संगीत उत्तम जगदीश का।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: फिल्म नूरी से सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, गीत जानिसार अख्तर का और संगीत खयाम का।

फिल्म थानेदार से सुनिए आशा भोंसले, अमित कुमार और साथियों को। गीत समीर का और संगीत बप्पी लहरी का।

फिल्म प्रेम रोग से सुनी लता मंगेशकर को। गीत संतोष आनंद का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म विधाता का गीत सुनिए सुरेश वाडकर और अनवर के स्वरों में, गीत आनंद बख्शी का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
0: तो लेन देन?
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आप भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: फिल्म विजय पथ से सुनिए साधना सरगम और साथियों को।

0: आएगी ना।
1: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सोहनी महिवाल फिल्म से सुनिए आशा भोसले और शब्बीर कुमार को।

फिल्म काला पत्थर का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में। गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत राजेश रोशन का।

तुम बिन। आइए इस फिल्म से सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को सुने, गीत फैज अनवर का और संगीत निखिल विनय का।

फिल्म राजकुमार का गीत सुनिए, लता मंगेशकर के स्वरों में गीत शैलेंद्र का और संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म जान से सुनी अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों को, गीत आनंद बख्शी का और संगीत आनंद मिलिंद का।

ढाई अक्षर प्रेम की। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अनुराधा पौड़वाल और बाबुल सुप्रियो को, गीत भैरव अरुण का और संगीत जतिन ललित का।

गा मेरे मन गा। श्रोताओं, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, पेश है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की थी आरटी बर्मन ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश एक बार फिर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राहुल देव बर्मन का, और फिल्म है पराया धन।

कश्मीर की कली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। श्रोताओं, आपको बता दें, इस समय आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवाते हैं, जिसकी धुन सचिन देव बर्मन ने तैयार की है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और इस गीत को हमने फिल्म गाइड से लिया है।

श्रोता, अभी आपने मर्यादा फिल्म का ये गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और सुरों से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं छोटी सी

मुलाकात फिल्म का ये गीत आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं, गीत के बोल हसरत के और संगीत शंकर जयकिशन का।

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की, फिल्म थी रेशमा और शेरा। इस गीत को लिखा था बाल कवि बैरागी ने और संगीत तैयार किया था जयदेव ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति SH बिहारी का गीत, OP नैयर का संगीत, आशा भोसले की आवाज़ और फिल्म है सावन की घटा।

संगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी मुकेश की। गीत के बोल हसरत जयपुरी के थे, संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और इस गीत को हमने फिल्म पारसमणि से लिया है।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत अभी आपने सुना, जिसका संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। आवाज़ें थी मुकेश और लता की और फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता। लीजिए बंदिनी फिल्म का गीत सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा एक ही शीर्षक से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको नजर शीर्षक से कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय होगा मूंगफली की उन्नत खेती। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए नारियल के फायदे, रक्तदान महादान, दहेज प्रथा एक अभिशाप और लू से दिलाएं राहत, जौ की राबड़ी। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवाणी। आज चर्चा के विषय रहेंगे विचार जीवन का आधार, फिजूल खर्ची से बचाव, राजस्थान की सभ्यताएं, भारत की अफवाह प्रणाली और साथ ही आज के इतिहास पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण में 6:05 पर सिराय की प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय रहेंगे राजस्थानी रीति रिवाज, अरहर की खेती, गायों की देखभाल, साथ ही उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम

की जानकारी भी दी जाएगी। 7:45 पर भक्ति संगीत होगा, 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर हमारा साप्ताहिक राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा गोरबंद, और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा आप सुन सकते हैं। ये था कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक है नजर।

एक ही शीर्षक प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन शेखावत का नमस्कार। साथियों, किसी शायर ने कहा है कि मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखने जाऊं तो नज़र तो आए। आज बात करेंगे नज़रों पर और कुछ गीत भी आपको सुनवाएंगे। साथियों, ये नज़र ही होती है जो बताती है कि कौन हमारे लिए ख़ास बन गया है और हम उसकी निगाह में किस काबिल हैं।

साथियों, नज़र शीर्षक से कुछ फिल्मी गीत इस समय आप सुन रहे हैं। एक ही शीर्षक प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। श्रोताओं, मोहब्बत में जब दिल बहुत बेचैन हो जाता है, इसकी खबर जहां को हो या ना हो, महबूब तक तो बात न जाने कैसे पहुंच ही जाती है।

साथियों, मोहब्बत में जब किसी से नज़रें मिलती हैं और दिल धड़कने लगता है और आलम पर एक बेकरारी सी छा जाती है, तो फिर ये दिल सैकड़ों सवाल करने लगता है।

साथियों, मधुरता या मिठास की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत होती है। दो मीठे बोल उदास दिल को एक पल में खुश कर देते हैं, और यही मिठास किसी की नज़रों में दिखाई दे तो फिर क्या कहना।

पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। प्रोग्राम से सुमन को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

श्रोता, अभी आपने कार्यक्रम सुना एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था नसर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, और ये है प्रोग्राम की अगली पेशकश।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय है उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र।

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपां किसानी करा और पूरे साल आपां मेहनत करा, बिंगे बाद में कई बिरियां बहुत सा किसान भाइयों मन में आवे कि जीती आपां मेहनत करिए बीती आपां उत्पादन जी को है वो आपां ने मिलियो को नहीं। बिंगो कारण के है इन पर अगर आपां विचार करा तो ईसा मूल मंत्र है, छोटी छोटी बातें हैं जकी के ऊपर अगर आपां ध्यान करा तो आपां बढ़िया उत्पादकता ले सका। उत्पादन लेने वास्ते आपां आ छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा, जियां समय पर आपां बुआई करा इं शू हो सी के कै ज़्यादा से ज़्यादा आपां उत्पादन ले सकांगा। बिजाई वास्ते हमेशा प्रमाणित उन्नत बीज बोवा। देखो गयो है कि जिका किसान भाई प्रमाणित और उन्नत बीज लेवे बांगी फसल जी की है 20 से 25% तक बढ़ गया वे। बीज को हमेशा उपचार करा, जकीन आपां बीज को टीकाकरण भी कहते हैं, ईशु के उसी कि कम खर्चे में फसल जी की है बा निरोग रहेगी और स्वस्थ रहेगी। माटी की जांच हमेशा आपां ने करवानी चाहिए, सिफारिश के अनुसार आपां ने संतुलित उर्वरक डालना चाहिए। ईशु उर्वरकों के ऊपर जी को अपनो एड़ो पीस हो जावे वो बचत हो जाएगी और जब बचत होगी तो वह आपने मुनाफा में ही गिनी जाएगी। गर्मी में आप हमेशा गहरी जुताई करनी चाहिए, भारी मिट्टी के अंदर तो विशेष तौर से आप ध्यान रखा कि गहरी जुताई करा और बिना कई दिन छोड़ा भी शू के होगा कि जी की खरपतवार की समस्या रोग कीट को जी को प्रकोप है भी शू आपने निजात मिलेगी, बिंग में कमी देखने में आएगी। सही बीज दर रखा, हमेशा कतार में बुआई करा, कतार शू कतार की जी की दूरी है बिना समुचित रखा। इं शू के होसी कि पौधे की जी की सही संख्या है और सही दूरी शू अच्छी बढ़वार आपने मिलेगी बी शू आप ज़्यादा उपज ले पावांगा। बिंगो कारण और होगा कि जब दूरी सही होगी तो बिना पूरा पानी मिलेगो, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगो और पौधों जी को है वो चोखो बढ़वार लेवेगो। जुताई बुआई जद भी आप खेत की करा तो डलानगी आड़ में करा, डलानगी आड़ में जब आप जुताई करांगा तो जिको वर्षा को जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जमीन के अंदर जावेगो। जमीन के अंदर जब वर्षा को जल कट्ठो होवेगो तो वो एक तो पानी की पूर्ति करते रहेगो, दूसरों अपनी जमीन के अंदर जिको है नमी बनाए रखेगो जिको अपनी फसल के बढ़वार वास्ते सबसे जरूरी चीज़ है। फसल हमेशा ही बदल बदल के बीजा ईशु के हुए कि कीट रोग को जिको प्रकोप है वो कम हो जाए। एक ही एक तरीके की जब आप फसल बीजा तो बेई सागी कीट बेई सागी रोग अपनी फसल ने कई बार पूरी की पूरी नष्ट कर देवे और किसान ने बहुत बड़े नुकसान को सामना करना पड़े। तो फसल हमेशा आप बदल बदल के बीजा, हमेशा मिलवा फसल करा। ईशु फसल का जिका भाव है बिंग माँ बी जी को अपनो जोखिम हुआ वो कम हो जाएगो और अलग शू फसल की आपा ने प्राप्ति हो जाएगी। दलनी तिलनी जी की फसलें हैं बंग माँ आपा जिप्सम को प्रयोग जरूर करा। ईशु के उसी कि भूमि की जी की ताकत है, भूमि की जी की उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाएगी, उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी, तेल को जी को प्रतिशत है बिंग मात्रा बढ़ेगी। जब आप मंडी के अंदर अपनो उत्पादन लेके जावांगा तो बिंगा भाव जी का है वह गुणवत्ता के आधार पर आपने बढ़िया मिलेगा। तेल की प्रतिशत की मात्रा के जो बढ़ गया ही है बिंग आधार पर आपने मुनाफो जी को है वो ज़्यादा हुआ। पानी की जी की समस्या है बाद दिनों दिन आपने सामने आने लग रही है तो बी वास्ते जरूरी है कि आप फवारा पत्ती ड्रिप पाइपलाइन आंगो इस्तेमाल करा। इशु पानी की बचत होगी ही होगी, सागे आपनों जी को सिंचित क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। जब पानी को सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो अपनी पूरे खेत ने पानी मिलने लग जाएगा। अब सरकार जी की है बा आपने पूरी सुविधा देने लग रही है तो चाहे छोटो किसान है चाहे बड़ो किसान है बिना आपके खेत के माँ डिगी बनानी चाहिए। पहला डिगी के अंदर आप पानी जी को है वो आपने संचित करा, संचित करने के बाद में आप जद समय हुए बी समय आप सिंचाई करा। फसल की जी की क्रांतिक अवस्था है बीम पर सिंचाई करनी बहुत ही जरूरी है। कई बार आप देखा कि जी के समय क्रांतिक अवस्था हुए बी समय आप सिंचाई वास्ते अपने कन पानी उपलब्ध को नहीं हुए तो जब डिग्गी होगी तो अपने कन पानी भी उपलब्ध होगा और फवारा

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ये बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्य कर्म घर आंगन सोन नाली सगली मेरी प्यारी प्यारी बहना ने ई तपती सुलझती गर्मी में रोश निभाईगा घना घना ठंडा ठंडा राम राम। बिनो आज मैं थार खातर लेके आई हूँ बहुत सारी जानकारी गीत भजन, तो आपा चर्चा कर सियाँ गर्भवती महिलाओं खातर काचे नारियल का फायदा, रक्तदान महादान दहेज प्रथा एक अभिशाप, हर आपनी सेहत रो राज यानी लूस लूस रात दिलावे जोगी रापड़ी। नारियल रो मिठो पानी, नारियल रो मिठो पानी तन मन ने दी आराम, मायड़ो आहार मारे रखे माँ बालक रो ध्यान, धरती रो ई वरदान है। की कही बेणो कि धरती रो ओ वरदान है सेहत रो रखवार, गर्भावस्था में काचो नारियल खुशहाली रो आधार। बेणो गर्भावस्था एक महिला खातर एक खास टेम हो है। और ई टेम माँ ने आपकी सेहत को खास ख्याल रखना पड़े। आचो खान पान माँ है टाबर दोनों ही खातर सेहत खातर किए की जरूरी हुए। मेनू बाजार में फल तो बहुत मिले पर जो कच्चो नारियल है नी वो एक ईशो फल है जो गर्भावस्था में घणो फायदो करे। नारियल गो पानी, नारियली गिरी और इंगो तेल, बेनो तीनों ही अपने शरीर खातर बहुत ही फायदेमंद है। नारियल में विटामिन खनिज तत्व फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में हुए जो कि शरीर ने अपने शरीर ने किए कि ताकत देवे। नारियल को पानी शरीर ने ठंडक पहुँचावे और पानी की कमी ने दूर करे। कई बार किए कि बेनो आप देखा नहीं कि गर्भवती महिला बिना उल्टियाँ आने लग जाए, तो वह उल्टियाँ वजह से उनकी वह कि वह थकान और कमजोरी महसूस करे, तो इसे टेम में भी ने नारियल को पानी पीने से भी कि आराम मिल जाएगा और भी पाचन क्रिया वह भी मजबूत हो जाएगी। ये तो कौन बेनो देखो काचो नारियल में जका पोषक तत्व हुए नहीं वह बालक के विकास में मदद करे। हर बेनो काचो नारियल में विटामिन हुए कैल्शियम हुए मैग्नीशियम हुए और पोटेशियम हुए जो कि बालक की हड्डियाँ और शरीर ने मजबूत बनावे। मैं काचो नारियल रोग प्रतिरोध क्षमता ने भी बढ़ावे। ई शुकी है कि माँ का जो संक्रमण हुए नहीं और या छोटी मोटी कोई बीमारियाँ आवे वह को नहीं होवे, और काचो नारियल जो है वो प्राकृतिक की ऊर्जा को स्रोत है। कमजोरी और थकान ने तो दूर करे और सारे दिन बेणो अपना शरीर है वो किए कि तरोताजा बनियो रहे। तो बेणो इन विषय पर आप चर्चा तो और कर सियाँ, पर पहली मैं थाने सुनाऊँ एक प्यारो सो भजन।

हाँ तो बेनो सुनियो गीत। तो अपा गीत छू पहली चर्चा करी के न काचा नारियल का फायदा। तो बेनो काचा नारियल तो बहुत फायदा है। काचो नारियल खाने छू बेनो की है कि आपनी त्वचा हर बाल भी सूना रीवे। गर्भावस्था में बेनो देखो पेट को आकार जो वो बढ़ जाए। हर भी छू की है कि पेट के ऊपर निशान पड़ जाए। जे आपा भी टेम नारियल को तेल लगावा तो वह निशान कौन पड़े। मैनू गर्भवती महिला मैं आपने अक्सर देखा कि बिंगो बीपी तो बढ़ डोई रही है। तो कच्चा नारियल में की है कि पोटेशियम हुए जो कि बीपी ने नियंत्रित करे और बीपी बढ़न कौन दिए।

मैंने गर्भावस्था में नारियल को पानी भी पीस के और कच्चा नारियल की चटनी बना लिए। कच्चा नारियल देखो कि है कि बिनगी गिरी है वनी वाह जिकी बिंगने गिरी का खीर बना सका, बर्फी बना सका, लड्डू बना सका। अरे ए बना के भी गर्भवती महिला खास कर मालियो को यहाँ के जन भी मन गिरी बावे कोनी पानी कौन बावे तो काचा नारियल का यह पतीजा भी बना के खास का। काचो नारियल सेहत खातर बहुत ही जरूरी होए। जी हाँ आजकल गर्मी आपकी चरम सीमा पर है तो इन टेम नारियल पानी जरूर पीणो चाहिए। नारियल पानी के सागे सागे की है कि आपने नींबू पानी है छा राबड़ी भी अपनी सेहत खातर जरूरी है तो आपने अंगूर भी आने भी पीनी चाहिए। तो जो कि गर्भवती स्त्री ने काचो नारियल या नारियल पानी पिलाना चाहिए। मैं एक वे नारियल का माई खोपरा भी आवे ते देखे हो सी वे जका नारियल का सूखा खोपरा आवे नहीं मैंने बांगो प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है क्योंकि वह खोपरा की तासीर वह गर्म हुए।

भेड़ों सोचो कोई आदमी लाचार मजबूर हो गए वो अस्पताल में पड़ी हुए। हर जिंदगी हर मौत के बीच में है, हर बिना खून की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। हर इसे टाइम में जे आप बिना थोड़ो सो रक्त दान कर देवा तो भी आ मरीज की जिंदगी बच जाएगी। तो वो बड़ा ही पुण्य को काम है। रापा ने बड़ो ही मन में एक खुशी सी मिले। देखो बेणो आप अनाज है धन है कपड़ों है या फिर लंगर लगावा भूखा ने रोटी देवा ये मानो कि आप हर प्रकार से दान पुन करा पर जको पुन रक्त दान करने से मिले नहीं वो पुन सब से बड़ो हुए। इन्हें ही तो महादान की वे बेणो खून कोई फैक्ट्री में कौन बने वो तो भगवान को देड़ो अपने एक अमूल्य उपहार है। मान लो कोई दुर्घटना हो जाए बीमार होए या कई बारी किया कि मरीज ने खून की जरूरत पड़े तो बेणो ई टेम रक्तदान की जिंदगी बचा सके। बेणो रक्तदान के वह मैं एक स्वस्थ आदमी हुए नहीं जिका कोई बीमारी ना हुए बिंग डॉक्टर आपकी देख रेख में खून निकाले थोड़ा दिन बाद में कि वो आदमी जो है बिंग शरीर में खून की पूर्ति हो जाए। देखो बेणो रक्तदान महादान क्या मी कि वे क्योंकि वो व्यक्ति को जीवन बचा सके एक मरते आदमी ने बचा सके रक्तदान तो बिना स्वार्थ को दान है और वो मानव सेवा और प्रेम को प्रतीक है। मैंने भगवान ना करे जे कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बड़ी बीमारी लग जाए या मान लो कोई ऑपरेशन हो तो हुए तो किठा कद मरीज ने खून की जरूरत पड़ जाए। देखो बेणो कोई आदमी अस्पताल में पड़ी है और डॉक्टर कह दिया भी अब आधा घंटे में खून चाहिए तो बेणो इतनी जल्दी खून कौन मिले। अरे जे अपन खून को दान करे हो सी हॉस्पिटल में पड़े हो सी तो वह की है कि बिने खून न चढ़ा दे सी अर बिंग जिंदगी बच जाएगी। बेणो कई गरीब ईशा भी हुए जका की है कि खून ने खरीद कौन सके कि वाक बेचारा कहता पीसा भी कौन ही हुए तो वो अपने शरीर में बन खून तो अपने शरीर में बन तो ही रहे तो इन खातर जो आदमी खरीद ना सके भी खातर वो रक्त दान किया एक वरदान है। तो बेणो टेम टेम से आपने रक्त दान कर तो रहना चाहिए। बेण वो महादान तो है ही सागर रक्त करने से रक्त दान करने से आपने घना फायदा हुए पर बेणो फायदा पर चर्चा तो आप फिर कर सा पर पहली सुन से एक प्यारो सो गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हाँ तो बेनो, आपा चर्चा करे ही रक्तदान महादान। अब बेनो, रक्तदान करने से अपने शरीर ने की फायदा है तो आपा करा चर्चा। जी हाँ, फायदा तो रक्तदान करने से आपनो शरीर स्वस्थ रहे, नयो खून बनतो रहे जो आपने शरीर ने ताजगी देवे। जी आपा नियमित रक्तदान करा तो कई बीमारियां से बच सका, क्योंकि बेनो देखो, रक्तदान करना अपने शरीर में खून निकल जाए नहीं तो अपना नयो खून बन जाएगा, नयो खून बनेगा तो आपा बीमारियां कौन लग गए। बेनो आपा की कोई जीवन बचावा तो मन में एक आत्मिक खुशी और संतोष मिले। रक्तदान से भाईचारो बढ़े। बेनो आज कई संस्था है, विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल ए रक्तदान शिविर लगावे। आज का युवा रक्तदान के प्रति जागरूक है। अब तो गाँव में भी लोग किए रक्तदान को महत्व समझण लग गया। कई गांव तो इच्छा है कि बैठे रक्तदान शिविर भी लगावे। बेनो इंग सागा एक समस्या है, वह है लोगों में गलत धारणा। कोई कहे कि रक्तदान करने से खून कम हो जाए, शरीर कम हो जाए, चक्कर आन लग जाए। ऐ जी नई नई गलत धारणा लोग पाल रखी है नी बेनो, ऐसा क्यों को नहीं हुए, इंगा तो फायदा ही है। पहली थाने बताया फायदा, रक्तदान ने बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल है, गाँव में रक्तदान को महत्व बताना चाहिए। ऐज की आज की जी युवा पीढ़ी है नी, बिना प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बेनो ऐज का आप समाज में जो सुधार कर सी नी तो आज वाली युवा पीढ़ी

ही करसी। युवा ने समाज सेवा खातर आगे आनो चाहिए, बन भी चाहिए कि मैं समाज की सेवा करा। तो बिनो जिया अस्पताल है, कई संस्था है, आने टेम टेम पर रक्त शिविर लगाना चाहिए। रह जकी गलत धारणा है नी आम लोगों में जकी फैल रही है, बने दूर करनी चाहिए। बने दूर क्या करनी चाहिए कि डॉक्टर आगे और बने समझावे कि भी रक्त दान करना चाहिए कि को नहीं हुए। अरे बिनो इन बारे में लोगों ने जानकारी देनी चाहिए। अरे बिनो रक्त दान महादान वो एक ईशो दान है जको कि आदमी को जीवन देश के ईशो मोटो दान। यूं तो बिनो मोटो दान और क्यों होसी। जी आप सारा मिल के रक्त दान करा तो पतो ही कोनी कितनी जिंदगी आप बचा सका। बिनो आ बात आपने ध्यान रखनी चाहिए कि मानव सेवा ही साचो धर्म है, हनी कि मानव सेवा ही साचो धर्म है। रक्त दान ई सेवा को सर्वोत्तम उदाहरण है। तो बिनो कणी कही वे रक्त दान स्यों बचे जीवन, रक्त दान स्यों बचे जीवन मिले नई मुस्कान। मानव सेवा स्यों बढ़ कर के कह कि मानव सेवा स्यों बढ़ कर कोनी कोई दान। थोड़ी रक्त री बूंदा करे बड़ा उपकार, रक्त दान ही महादान है ओ मानवरो सिंगार, ओ मानवरो सिंगार।

बेटी तो आंगन री चिड़िया, बेटी तो आंगन री चिड़िया, प्रेम सहनरी खान, दहेज की आग में जले क्यों मानव रो मान, दहेज री आग में जले क्यों मानव रो मान, लोभ लालच बढ़तो जावे, के अभिनो कि लोभ लालच बढ़तो जावे, टूटे रिश्ता आज, दहेज प्रथा बनगी देखो, समाज माथे लियाज, समाज माथे लियाज। बीनो समाज में घनी बुराइयां है, पर दहेज प्रथा सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। वो एक ब्याह एक पवित्र संस्कार हुए, जगह ने की है कि लोग आजकल एक व्यापार बना रखी है। लड़की का माँ बाप बेटी के ब्याह का टेम देखो, धन है, गाड़ी है, गहना, फर्नीचर और भी ठाकुर ने कितो कीमती सामान देवे। अरे बेणो महंगाई तो बहुत बढ़ गई, थान तो पता ही है। ई पत्थर का कारण है जिसका गरीब परिवार है नी, वहाँ खातर तो एक बहुत ही मोटी समस्या होगी। अब बेणो दहेज प्रथा कह क्या ने तो छोरी का जो परिवार वाला वह नी, वह भी छोरी के ब्याह गए माँ दहेज यानी कि थाने बताए वो सामान देवे, तो बिना पहली तो वो सामान देवता वो प्रेम और स्नेह देवता, जितो छोरी को बाप उग तो नहीं वो भी तो ही समान देता, छोराला मांगता को नहीं। पर आज तो आई एक बहुत ही मजबूरी होगी, अरखी बेणो समाज को दबाव भी हो जाए। बेणो कहने ने तो आज अपना जो समाज है वो पढ़ो लिखियो है, पर फिर भी दहेज प्रथा तो है। जिका घना पढ़े लिखे है नी वह ही आपकी शान है और समाज में इज्जत खातर धन मांगे। कई छोरों की तो कोई भी छोरो कोई नौकरी लाग गयो, अच्छे पद पर है, वो अच्छो कमावे तो बिना देख के भी वह धन मांगे। छोरी को बाप आप ये सचियों बढ़ गए देवे, वो यहाँ जाने जाने बेटी सुखी रेसी, आ बाप की मजबूरी होए, वो आपकी इच्छाओं कौन देवे, बी मजबूरी हुए बिना आपकी छोरी खातर वो धन देना पड़े, चाहे वो कर्जे में डूब जाए। अरे बेणो कई बारी तो दहेज कम देना से लड़की ने सासर ला इतना प्रचारित करे, मारपीट करे, गाली काटे, अरे कट्ठे कट्ठे तो मार भी दी वे। तो दहेज प्रथा गणा ही इंगा तो बहुत कारण है। थन के बताऊं बेणो कि कई लोग तो ब्याह ने कमाई को साधन समझ रखी है, आप टाबर छोरा ने पढ़ा पढ़ू लिए, नौकरी लाग जाए तो भाई सोचा भी मैं बड़ो सारो धन अब वसूल कर लिया, तो कि समाज में दिखाओ हुए दिखावे खातर भी दहेज मांगे, ए लोग देवे भी है तन मारी शान बढ़ सी। कई जगह ए शिक्षा भी को कारण है, पर बेणो दहेज मांगने में पढ़े लिखा भी शामिल हुए। कई लोग समाज का डर से भी दहेज देवे, वे भी समाज को डर हुए भी लोग यहाँ ना कहते भी छोरी ब्याह में के दियो है, इन्हें तो कि दियो ही कौनी। तो बेणो दहेज प्रथा का दुष्परिणाम भी हुए, आप दुष्परिणाम पर चर्चा फिर कर सा, पर पहली सुन लिया एक गीत।

हाँ तो बहनों, आपने चर्चा को विषय हो दहेज पर था एक अभिशाप। तो बहनों, दहेज के कारण माँ बाप ने कर्ज लेना पड़े। और कई बारी तो बहनों यह आवे कि कर्ज चुकाता सारी जिंदगी बीत जाए पर कर्ज को नहीं उतरे, हर घर जमीन तका तक बिक जाए। कई लोग ये कि बेटी ने फिर ये दहेज प्रथा कारण बेटी ने बहुत समझन लाग जाए, जिसों की है कि वो कन्या भ्रूण हत्या वर्गी कुप्रथा भी फैले। बहनों, पहली प्रथा बहुत ही, अब तो बहुत ही कम होगी। और दहेज कम या ना मिलने से बहू ने तंग करे, मीन सगा मारपीट करे और कई बारी के भी हत्या भी कर दे। कि आप आजकल खबर में देखियो को नहीं पढ़ा भी? हाँ बहनों, बेटी कई बारी दुखी हो जाए और वह आत्महत्या जैसे कदम उठा लेवे और आपकी जिंदगी ने खत्म कर लिए। और बहनों, दहेज प्रथा के कारण गरीब और अमीर अंग बीच में क्या कि भेदभाव आ जाए। गरीब आदमी जो को है नहीं, वो आपकी अमीर ने देख के आपकी शान खातर बढ़ चढ़ के धन देवे, चाहे भी ना कर्जो ही हो जाओ। और अमीर आदमी आपका समाज में इज्जत बनाने खातर धन देवे या फिर लेवे। पर अब ये प्रथा बहनों अंत होना चाहिए, आ प्रथा अब खत्म होनी चाहिए। ई खातर सरकार कई नियम बना रखे है, कई बार सरकार कदम उठान लाग रही है। जिया देखो, दहेज निषेध कानून, इनमें क्या हुआ कि दहेज लेनो और देनो दोनों ही अपराध है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, जागरूकता अभियान, इनमें बहनों स्कूल कॉलेज और गाँव में जैठे कि पंचायत हो बैठे जागरूकता अभियान भी चलावे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सामूहिक विवाह योजना, इनमें क्या हुआ कि बहनों सीधो साधो और कम खर्च में ब्याह ने बढ़ाओ देने खातर सामूहिक विवाह को आयोजन करे। सामूहिक ब्याह यानी कि बोली सारी छोरियां को कट्ठो ब्याह करनो। तो सरकार गए प्रयास गए सागे आपा ने भी की कोशिश करनी चाहिए, शिक्षा को प्रचार करना चाहिए, फिजूल खर्ची ये जगह सीधो साधो ब्याह ने महत्व देना चाहिए। आजकल तो देखियो को नहीं बेनो, चाहे गांव में ब्याह हो, टेंट इतो जोर को लगावे, नीचे कालीन लाइटा सजावट, के गांव और के शहर बहुत इन पर खर्चो करे। तो बेनो इन खर्चे को जिया टेंट उंट लगाना, लाइटा लुइटा सजावट आंगो तो कोई महत्व ही कोनी, कौन याद रखे? तो आजकल का छोरा छोरी है नी, वह ने दहेज प्रथा को विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है नी आई अपने समाज को सुधार कर सके। और दहेज मांगने वाला के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और बेनो, समाज ने जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। दहेज प्रथा समाज में एक कलंक है, वो एक परिवार ही को नहीं समाज ने भी कमजोर बना देवे। जब तक ये समाज की सोच को नहीं बदलेगी नहीं, जब तक ये आकृति खत्म को नहीं हुआ, अपना सारा ने मिल गए इनको विरोध करना चाहिए। बेटी ने सम्मान देना चाहिए, न जाने कितनी बेटियां ई दहेज प्रथा की बलि चढ़गी और भी चढ़ेगी। तो बेटा इनको अंत हो सी तो अपनो सुंदर सुरक्षित और सह सम्मान समाज को निर्माण हो सी। तो दहेज प्रथा को विरोध करना चाहिए। अब आप सुन लिया 1100 गीत।

मीणो, आजकल आसमान में आग बरसे, धरती तपे, हटाती लू चाले। ई टेम में जे ठंडी ठंडी जोगी राबड़ी मिल जाए तो केवण होगी। मीणो जो तो एक पुराणो अनाज है, वो शरीर ने ताकत देवे, लू हर गर्मी से बचावे। जो की राबड़ी के अमीर अर के गरीब सारा ही ने पसंद करे। जोगी राबड़ी सादी पौष्टिक और आसानी से बनने वाली चीज़ है। राबड़ी का घना फायदा है, यह शरीर ने ठंडो रखे, लू से बचावे, हल्की और सुपाच्य होवे, जिको पेट ने आराम देवे। जोगी राबड़ी शरीर ने ऊर्जा देवे, थकान मिटावे और कमजोरी ने दूर करे। मीणो जोगी राबड़ी पीने से शरीर हाइड्रेट रहे और पानी की कमी कोनी आवे। हर जो में फाइबर हुए, विटामिन हुए और खनिज तत्व भरपूर मात्रा में हुए, वो एक पौष्टिक आहार भी हुए। मैंने राबड़ी बनाने तो थाने आवे ही है, पर चलो जखी मेरी बेना ने नहीं आवे बन आपा बता देवा। पहली जोग आटो लियो, बिन पानी में गोड़ के हर मंदी मंदी आंच पर पका लियो। अब ठंड हो जाए जब इगमा छा बर्फ हर कालो लूण जीरो जीरे ने बूंद गए बिना पीस गए और वो मिला के पियो। तो आ ठंडी ठंडी राबड़ी आप भी पियो, गरगा ने भी पियाओ, शरीर ठंड हो रही सी, सागा रहे सी निरोग। इवें बिनो आपने अठे गर्मी की ज्यादा ही पड़े, ई खातर लोग शरीर ने ठंडो रखने खातर जोगी राबड़ी पिए। अरे अपने गाँव में तो आज भी किया कि जद रोटी खावे जद राबड़ी होनी जरूरी है। जब आदमी खेतों में जावे नहीं तो वो क्या कि जोगी राबड़ी पी के जावे, ईशु भूकोन लागे ना भी ना तावड़ो लागे ना लू लागे। तो जो की जगी राबड़ी अपनी संस्कृति और सेहत दोनों का पहचान है। आ स्वादिष्ट तो है ही, सागे ई गर्मी और लू।

अपने स्वास्थ्य खातर वरदान है। आपने आधुनिक जगह पेय पदार्थ नहीं बांगी जिग्या, आज ये अपनी परंपरागत पेय पदार्थ पीणो चाहिए, जो गिरावड़ी तो अमृत के समान है। अब सुना एक गीत।

अभी आपने कार्यक्रम सुना घर आंगन। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र

0: आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री

0: राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024

0: 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। आइए इन्हीं आवाज़ों को एक बार फिर सुनते हैं। फिल्म है आशिकी।

शान की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी सांवरिया। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश साया फिल्म से, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

यह आवाज़ थी उदित नारायण की और फिल्म थी और प्यार हो गया। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत सुनिए, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर होंगी।

0: वजीर-ए-फ़हराज़ नाज़ सिंह ने कहा है कि एक मुश्तरका बचाव टीम के जरिए गुलमर्ग में केबल कार में फंसे हुए 300 सयाहों को कामयाबी के साथ बचाया जाना भारत की आफात से निपटने वाली एजेंसियों की पेशावराना सलाहियत, जुरत और इश्तराक का इजहार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने चैलेंजों से पुर कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, NDRF, SDRF पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम की कोशिशों को सराहा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात पहुंचे, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जा रहा है। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजार रहे हैं। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुजाज किराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। इसराइल की फौज ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कई हमले किए हैं। इससे पहले इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि उनका मुल्क हिजबुल्ला ग्रुप पर अपने हमले तेज करेगा। इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा है कि उसने लेबनान के मशरक और कुछ दीगर इलाकों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हिजबुल्ला के साथ जंग लड़ रहा है और उन्होंने फौज को हिदायत दी है कि वो पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई करे। उन्होंने दावा किया कि इसराइली कार्रवाई में हिजबुल्ला के 600 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। दोनों फरीकों के दरमियान जंग बंदी की मुद्दत 45 दिन तक बढ़ाए जाने के बावजूद ये हमले हुए हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो इस बात की हिमायत नहीं करते कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मांगने पर लाने के अब्राहम मुआहदों में शामिल हो। उन्होंने इस राय का इजहार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान अमन मुज़ाकरात में शामिल मुल्कों पर जोर दिए जाने के बाद किया है कि वो अब्राहम मुआहदों में शामिल हों, जिनमें इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान सफारती, इकतसादी और सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात और बहरैन पहले से ही इस मुआहदे में शामिल हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगंडा में एबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बलकवामी तशवीश की सेहत आमा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिया है। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम, महफूज और मजबूत तवानाई की मार्केट्स के लिए पुख्ता अज़्म का अदा किया। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीज हज अदा कर रहे हैं और IPL क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम मेरी पसंद।

अभी आप सुन रहे थे आबरू फिल्म का नगमा, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। आइए अब सुनते हैं तू है मेरी ज़िंदगी फिल्म का नगमा, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

वतन मेरे प्यारे वतन, तू ही मेरी जिंदगी, ओ तू ही मेरी जिंदगी। सर पर मुकुट हिमालय का है, सीना तेरा विंध्याचल। सर पर मुकुट हिमालय।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब पेश है प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। दोस्तों, हम गुफ्तगु करेंगे गज़ल की ज़ुबान में। गज़ल यानी शायरी एक ऐसी सिंफ है जो न सिर्फ हमारे दिलों को सुकून बख्शती है, बल्कि इसके ज़रिए कही गई बात हमारे जहन पर मुद्दतों नक्श रहती है। मारूफ़ अदीब और इंटेलेक्चुअल खुशवंत सिंह जी ने कहा था कि अगर इश्क करना चाहते हो तो उर्दू सीखो, और अगर उर्दू सीखना चाहते हो तो इश्क करो। कहते हैं कि सारे जहां में धूम हमारी जबान की है, और जबान को मकबूल आम बनाने में शायरी ने एक अहम किरदार अदा किया है। इब्तदा से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदवार में यानी मुख्तलिफ जमानों में शोरा ने अपने अपने अंदाज में वो बातें कहीं या उन जज्बात का इजहार किया जो अवामी जज्बात से हम आहंग हो गईं। इस बात से आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि हर दौर की लफ्जियात बिल्कुल अलग होती हैं। वक्त बदलता है तो लफ्जियात बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, लेकिन जज्बात वही रहते हैं। शायरी उन्हीं जज्बात की अक्कासी का नाम है। एक अच्छा शेर वो है जो हर दौर में अपनी मानवीयत कायम रखता है। मीर तकी मीर का शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर सदियों पहले कहा गया था, लेकिन आज भी इसकी मानवीयत बरकरार है और आज भी अपने अंदर एक खूबसूरती रखे हुए है। तो दोस्तों, शायरी इसी शय का नाम है कि इसमें हर शख्स को जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उसे अपनी जज्बात मिल जाते हैं और फिर वो उसका अपना शेर हो जाता है, ये वो गज़ल उसकी अपनी हो जाती है। आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की इब्तदा करते हैं कलाम शायर से, और आज हमने जिस शख्सियत को मधु किया है वो हैं मारूफ उस्ताद और शायर प्रोफेसर शहपर रसूल। आइए सुनते हैं उनका कलाम।
2: गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाहिज़ा कीजिए। फैला जो मेरी ज़ात का सहरा मेरे आगे, फैला जो मेरी ज़ात का सहरा मेरे आगे, फिर उसके सिवा कुछ भी नहीं था मेरे आगे, फिर उसके सिवा कुछ भी नहीं था मेरे आगे। ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि अब कोई समर

आंदाए दुनिया न करा दे। अब कोई समर आंदाए दुनिया न करा दे, बाजुए शजर फिर हैं कुशादा मेरे आगे, बाजुए शजर फिर हैं कुशादा मेरे आगे। मुनकिर नहीं मौजूद व मयस्सर का मैं लेकिन, मुनकिर नहीं मौजूद व मयस्सर का मैं लेकिन, चलता ही चला जाए है रास्ता मेरे आगे, चलता ही चला जाए है रास्ता मेरे आगे। आईने इबरत ने जुबां छीन ली मुझसे, आईने इबरत ने जुबां छीन ली मुझसे। अब कोई बुरा है ना है अच्छा मेरे आगे, अब कोई बुरा है ना है अच्छा मेरे आगे। बहने लगा शरियानों में फिर घर का तसव्वुर, बहने लगा शरियानों में फिर घर का तसव्वुर। हसरत ने रखा फिर कोई नक्शा मेरे आगे, हसरत ने रखा फिर कोई नक्शा मेरे आगे। मशकीज़ा शराफत का लिए फिरता हूँ कब से, मशकीज़ा शराफत का लिए फिरता हूँ कब से। कोई तो कभी आएगा प्यासा मेरे आगे, कोई तो कभी आएगा प्यासा मेरे आगे। मख्ता मुलाहिज़ा कीजिए, किस शौक़ से मसरूफ़ नज़ारा हूँ मैं शह पर, किस शौक़ से मसरूफ़ नज़ारा हूँ मैं शह पर। किस नाज से बहता है वो दरिया मेरे आगे, किस नाज से बहता है वो दरिया मेरे आगे। एक गज़ल और मुलाहिज़ा कीजिए, मतलब हाजिर है कि किस सफ़र पर है रवां हम लोगों, वक्त आहट न सदा चाहता है। किस सफ़र पर है रवां हम लोगों, वक्त आहट न सदा चाहता है। कोई मंजिल है न कदमों के निशान, रास्ता ख़त्म हुआ चाहता है। ये शेर में मुलाहिज़ा कीजिए कि कोई बतलाए कि ये जीस्त का लफ्ज़ हमसे बेलफ्ज़ से क्या चाहता है, कोई बतलाए कि ये जीस्त का लफ्ज़ हमसे बेलफ्ज़ से क्या चाहता है। रात पलकों पे रुका चाहती है, ख्वाब आँखों से बहा चाहता है। रात पलकों पे रुका चाहती है, ख्वाब आँखों से बहा चाहता है। और एक मतला और है कि अपने होने की खबर वो यूं भी दुनिया वालों को दिया चाहता है, अपने होने की खबर वो यूं भी दुनिया वालों को दिया चाहता है। खा आवाज़ हो सन्नाटा हो वाहिमा कोई कबा चाहता है, खा आवाज़ हो सन्नाटा हो वाहिमा कोई कबा चाहता है। मुलाहिज़ा कीजिए कि दीदे बेदीद से हैरान किया, हिजर के कर्ब से तड़पा डाला। दीदे बेदीद से हैरान किया, हिजर के कर्ब से तड़पा डाला। आँख प्यासी है सो अश्क उसकी ग़ज़ा, आँख प्यासी है तो अश्क उसकी ग़ज़ा। दिल के मुजरिम है सज़ा चाहता है, दिल के मुजरिम है सज़ा चाहता है। इस गज़ल का आखिरी शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि यास गुज़री थी बगुले की तरह, धुंध समतों से न उतरी बरसों। यास गुजरी थी बगुले की तरह, धुंध समतों से न उतरी बरसों। आस आई दबे कदमों शह पर, रंग खुशबू में घुला चाहता है। आस आई दबे कदमों शह पर, रंग खुशबू में घुला चाहता है। एक गज़ल और पेश कर रहा हूँ, ज़रा गैर मुरद्दफ है और इसके काफ़िए पे भी नज़र कीजिए, मुलाहिज़ा कीजिए। आगही गर्द के मानिंद लगी थी जमने, कह-कहा मार के दुनिया को जगाया हमने। आगही गर्द के मानिंद लगी थी जमने, कह-कहा मार के दुनिया को जगाया हमने। और ये शेर है कि नशे में उनसे मिले जिनकी तवक्का भी न थी, नशे में उनसे मिले जिनकी तवक्का भी न थी। कैसे आलम में ये पहुंचा दिया किस आलम ने, कैसे आलम में ये पहुंचा दिया किस आलम ने। मुलाहिज़ा कीजिए कि कैसा इजहारे तसल्ली का सलीका था उसे, कैसा इजहारे तसल्ली का सलीका था उसे। ज़ख्म कुछ और ज़्यादा ही किया मरहम ने,

कैसा इजहारे तसल्ली का सलीका था उसे, जख्म को कुछ और ज़्यादा ही किया मरहम ने, और दोस्ती आखिरी इम्कान भी खोने ही को थी, दोस्ती आखिरी इम्कान भी खोने ही को थी, चल उठी कैसे कि जो नब्ज लगी थी थमने, चल उठी कैसे कि जो नब्ज लगी थी थमने। वही शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि हार कर ऐसे वो बिखरे कि सिमट ही ना सके, हार कर ऐसे वो बिखरे कि सिमट ही ना सके, फतह का आदी बना डाला था उनको हमने, फतह का आदी बना डाला था उनको हमने। और मक्ता मुलाहिज़ा कीजिए, कोई यूं डर के भी मैदान न छोड़े शह पर, कोई यूं डर के भी मैदान न छोड़े शह पर, धर लिया इतने ज़्यादा को भी इतने कम ने, धर लिया इतने ज़्यादा को भी इतने कम ने, आगही गर्द के मानिंद लगी थी जमने, कहकहा मार के दुनिया को जगाया हमने। हजरत गज़ल सहेली ममतना की मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कीजिए इसका मतलब। महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा हमारा नाम। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि मुंह से निकल गया है तो हैरान वो भी है, मुंह से निकल गया है तो हैरान वो भी है, लेना नहीं था जिसको गवारा हमारा नाम, लेना नहीं था जिसको गवारा हमारा नाम। और शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, सहमा हुआ है कब से बेचारा हमारा नाम, शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, सहमा हुआ है कब से बेचारा हमारा नाम। वही शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। और शह पर खामोश रह के ये हमने किया कमाल, शह पर खामोश रह के ये हमने किया कमाल, जीता कभी किसी

तक जानवरों का सारा हुजूम पांच हिस्सों में बढ़ चुका था। एक एक हिस्से की गिनती शुरू हुई। शेर के पास जमा हुए जानवरों की तादाद सबसे ज्यादा निकली। शेर जीत गया और फिर से जंगल का राजा बन बैठा। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और भालू अपनी हार से बहुत दुखी हुए और काफी शर्मिंदा भी। उन सब ने अपनी हार का जिम्मेदार भेड़ों को ठहराया। बाघ और भेड़िया तो मारे गुस्से के भेड़ों की रेवड़ पर जगह जगह टूट पड़े। जख्मी भेड़ें बदहवास होकर गिरती पड़ती, लंगड़ाती, रोती पीटती शेर के पास पहुंची। शेर ने उनका रोना धोना सुनकर दहाड़ते हुए ललकारा, खबरदार, अब अगर किसी ने इन पर हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। मगर शेर की दहाड़ और धमकी के बावजूद हमले नहीं रुके। कुछ दिनों बाद तेंदुआ और भालू दोनों एक साथ मिलकर भेड़ों के पास आए और बहुत ही एतमाद और भरोसे के साथ प्यार भरी आवाज में हमदर्दी जताते हुए बोले, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे वास्ते जंगल की दूसरी चरागाहें भी खुलवा देंगे। तेंदुआ और भालू की नर्म मुलायम बातें सुनकर भेड़ें जुगाली करने लगी, जैसे उनके सूखे मेदों से बहुत सारी हरी मुलायम पत्तियां निकलकर उनके मुंह में आ गई हों। उनके सर हिलने लगे, दुमे भी हिलने लगी और उनके पांव भी आगे पीछे होने लगे। गिरगिटों के जरिए शेर तक जब ये खबर पहुंची तो घबरा कर फौरन उसने अपनी सलाहकार लोमड़ी को तलब किया। लोमड़ी ने अपनी आंखें नचा नचा कर खबर की गंभीरता से शेर को आगाह किया। शेर ने बिना देर किए अपने पालतू दरिंदे जंगल के कोने कोने में दौड़ा दिए। देखते ही देखते बाघ और भेड़िए के बहुत सारे हमायती बंदी बनाकर गुफाओं में कैद कर दिए गए। बाघ और भेड़िए शेर की इस चालबाजी पर इस दर्जा झिल्ला उठे कि वो शेर को उसकी इस हरकत का मजा चखाने के लिए आपस में मिल गए। उन्होंने बहला फुसला कर गीदड़, सांप और बंदरों को भी अपने साथ मिला लिया। शेर से मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गई। सब ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। गीदड़ों की बाकायदा बैठकें होने लगी। हुआ हुआ निकलने लगा। दूर दराज के गीदड़ भी इस कोरस में शामिल हो गए। गीदड़ों ने अपनी भपकियों से भेड़ों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। सांप अपने बिलों से निकलकर भेड़ों के सामने लहरा लहरा कर अपना फन फैलाने लगे। उनकी फुनकारें भेड़ों के कानों में घुसकर उनके दिलों को दहलाने लगी। बंदर भेड़ों के रेवड़ों के आसपास के पेड़ों पर चढ़कर दांत किचकिचाने लगे। कलाबाजियां खाने के बहाने भेड़ों की पीठ पर धम धम कूदने लगे। बाघ और भालुओं ने अपने हमले तेज कर दिए। भेड़ें दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरफ से मार खाने लगीं। जगह जगह उनके बच्चे कुचले और डसे जाने लगे। बूढ़ी भेड़ें अपनी जानों से हाथ धोने लगी। नौजवान भेड़ें लगाने लगी और मादा भेड़ें अपने थनों की नोच कसोट के दर्द से कराहने लगी। तंग आकर बहुत सारी भेड़ें शेर की कछार में पहुंची। शेर से रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, खून रिसते हुए जख्म दिखाए और गिड़गिड़ा कर बोली, हमसे अब और नहीं सहा जाता, हमारी हालत पर तरस खाइए और किसी तरह इन दरिंदों से हमें बचाइए। भेड़ों का हाल देखकर शेर ने गुर्राते हुए अपने शेरों को हुक्म दिया कि वह हमला रोकने का जतन करें, मगर इसके बावजूद बाघ, भेड़िए और उनके साथियों के हमले नहीं रुके। भेड़ें शेर से नाउम्मीद और मायूस होकर रहमतलब निगाहों से दूसरे जानवरों की तरफ देखने लगीं। ज़्यादा घने और सफ़ेद बालों वाली भेड़ें भी न जाने क्यों इस बार उनके साथ हो गईं। ये देखकर कि भेड़ें उनकी तरफ देखने लगी हैं, बाघ और उसके साथियों ने हमले रोक दिए। अब भेड़ें बेखौफ होकर इत्मीनान की सांस लेने लगीं। उनके जख्म भरने लगे, मगर कुछ दिनों के बाद अचानक एक रोज़ रात के सन्नाटे में उन पर हमला हो गया। इस हमले में बहुत सारी भेड़ें मर गईं और हजारों की तादाद में बुरी तरह जख्मी हो गई। भेड़ों के रेवड़ में कोहराम मच गया। उनकी चीखों पुकार से सारा जंगल दहल उठा। उनके दुख में शरीक होने और उनसे हमदर्दी जताने जंगल के कोने कोने से जानवर पहुंचने लगे। अपना सारा काम छोड़कर जंगल का राजा शेर भी उनके पास पहुंचा। भेड़ों की हालत देखते ही शेर की आंखों से आंसू जारी हो गए। रो रो कर उसने भेड़ों का हाल पूछा, आगे बढ़कर उनके जख्मों पर मरहम रखा, हमदर्दी के बोल बोलकर ढारस बंधाई, हर तरह का दिलासा दिया और अपने कारिंदों से कहकर उनके आगे हरे नर्म चारे के ढेर लगवा दिए। सिर्फ यही नहीं कि शेर ने भेड़ों के गम में आंसू बहाए, उनके लिए मरहम पट्टी और चारा पानी का बंदोबस्त किया, बल्कि उनकी तसल्ली के लिए बहुत से गीदड़, बंदर, सांप और कुछ बाघ, भालू और भेड़िए पकड़कर बंद भी कर दिए। शेर के आंसुओं और उसकी चारागरी के जज्बे से भेड़ें फिर पसीज गईं।

0: डॉक्टर गजनफर अली से उनका ये अफसाना सुन रहे थे चारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
1: तो चलिए अब कुछ बातें हो जाए मौसीकी रेज यानी मौसीकी से भरी हुई कुछ शायरी का लुत्फ लिया जाए और गजल सुनी जाए जगजीत सिंह से।

0: जगजीत सिंह से अभी आप समाप्त फरमा रहे थे ये गजल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे। पहली पेशकश मेरे हमसफर फिल्म से है, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तनु प्यार।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम, महफूज और मजबूत तवानाई की मार्केट्स के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा किया है। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कानकनी और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में लाखों आज़मीन आज फरीज़े हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में ख़त्म हो गई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशी मित्सो मोटेगी और अमेरिका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले माशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फ़रोग की खातिर इख्तरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के ममालिक ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है। मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राबतों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खासतौर पर भारत बहरुल काहिल खत्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार उसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक नेटवर्क, जेर समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने की सरगर्मियां शामिल हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद पेशरफ्त की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारा खारजा आज सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उधर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से पहर ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 रोजा दौरे पर गैंगटॉक पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर सीनियर शख्सियतों ने किया। सदर जमहूरी अपने दौरे में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों का इफ्तिताह करेंगी, जिसका मकसद रियासत में महफूज और काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट सहूलियात में बेहतरी लाना है। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया नाथुला दर्रा जाएंगी और गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन वो सिक्किम पुलिस को भारत के सदर जमहूरिया के पुलिस कलर मेडल से नवाजेंगे। इसके साथ ही सिक्किम मुल्क में ऐसी 15वीं रियासत बन जाएगी जिसे ये बावकार एजाज हासिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाक बैनुल अक़वामी सरहद पर सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस इलाके में सरहदी हिफाजती दस्ते के अमले से बातचीत की और मुल्क की सरहदों की हिफाजत में खुद को वक्फ करने देने पर उनकी तारीफ की।

0: सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम, महफूज और मजबूत तवानाई की मार्केट्स के लिए पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासर की सप्लाई, कानकनी और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीज हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं। श्रोताओं, संध्या के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ सामान्य सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे, चर्चा होगी और साथ ही सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। दोस्तों, बात की शुरुआत हम करते हैं किसी भी बात से, किसी विचार से। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ यूं गावा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है कि ये मनुष्य जीवन जो है बड़े ही भाग्य से, बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। देवता भी मनुष्य जीवन के लिए तरसते रहते हैं। कहने का हमारा भाव अभिप्राय यही है कि इस जीवन में हम जो भी कार्य करें, सारे कार्य संभवतः ऐसे हों जो परोपकारी साबित हों, आदर्श के रूप में, स्वरूप में साबित हो। हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वही हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारे व्यक्तित्व का, हमारे चरित्र का निर्माण वही करते हैं। छोटे छोटे कार्य, हमारी एक्टिविटी, हमारे द्वारा सोचे गए, बोले गए, लिखे गए शब्द, किए गए कार्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। श्रोताओं, हमारे जो विचार होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। हमें तय करना है, सोचना हमको है कि हमें किस तरह के विचार अपनाने हैं, किस तरह का हमारा व्यक्तित्व हमें बनाना है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से शिक्षा, संस्कार,

और बहुत सारी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे विचार भी सार्थक होने बहुत जरूरी है। साथियों, इतिहास साक्षी है इस बात का कि उच्च कोटि के विचार जिन लोगों ने अपनाए समाज के लिए प्रेरणा बने, हमारे आदर्श बने, आइडियल बने, आज की पीढ़ी भी जब आगे बढ़ती है तो किसी न किसी को अपने मन में अपनी थीम बनाकर आगे बढ़ना होता है। आदर्श विचारों को हर कोई अपनाना चाहता है और अपनाना भी चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। उच्च विचार, सकारात्मक विचार, अच्छी सोच, ये सब जीवन के आधार होने चाहिए, क्योंकि वही हमारे कर्मों को दिशा प्रदान करते हैं और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमारी खूबियाँ, हमारे विचार जो समाज में, देश में दिखने लगते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: मन्नाली की आवाज में गीत अभी आपने सुना। सो तो बात हम कर रहे थे विचारों की। साथियों, विचारों के साथ साथ दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है, बहुत ही छोटे छोटे हमारे कार्य क्रियाकलाप जो होते हैं, अगर हम सही मायने में पूरा ध्यान रखेंगे उन पर, तो निश्चित ही हम बहुत सारी असुविधाओं से नहीं जूझेंगे। छोटी सी बात की चर्चा हम करते हैं कि दिन भर में हम जहां भी जाते हैं, घूमते हैं, ऑफिस में, अपने किसी भी कार्यस्थल पर, तो कभी हम सब्जी मंडी में, कभी हम किसी दूसरे मार्केट में, और न जाने कितने पूरे दिन में ऐसे स्थान आते हैं जहां पर हमें अपनी जेब से पैसे खर्च करने होते हैं। साथियों, जीवन में आवश्यक जितना होता है वो तो हमें अपनी पूंजी के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार, हमारी कमाई के अनुसार हमें खर्च करना होता है। लेकिन कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि फिजूल खर्ची, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती या जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा हम खरीद लेते हैं, सही मायने में यही फिजूल खर्ची कहलाती है। इससे बचना हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। साथियों, आवश्यक वस्तुओं के लिए हम भागते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची हमारे किसी भी काम की नहीं होती, और जो हमारा बजट होता है वो बिगाड़ने में कहीं न कहीं फिजूल खर्ची का पूरा योगदान होता है। हालांकि हम सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन कई बार परिस्थितियों के अनुसार हम कर ही देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम सब इसका पूरा ख्याल रखेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था आर्टिस्ट मनर उदास और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम था अमृत। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सोता हूँ बात हम कर रहे थे बजट की, फिजूल खर्ची की। सबसे बड़ी ये आदत और इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है बचपन से, माता पिता की मुख्य रूप से अपने बच्चों को मार्गदर्शन देने की जो भूमिका होती है, बच्चों को फिजूल खर्ची के जो अवसर दिए जाते हैं, उन सब में माता पिता का या गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। साथियों हर माता पिता चाहता है कि वो अपने बच्चे को बेहतर सुविधाएं

उसकी डिमांड को पूरा करे, उसके शौक पूरा करे, और करना भी चाहिए। लेकिन ये सब करते करते कई बार हम ये नहीं देख पाते कि क्या कहीं हमारे बच्चे या हमारा बच्चा अनावश्यक खर्च तो नहीं कर रहा, फिजूल में पैसे तो नहीं खर्च कर रहा। क्या हमारे बच्चों को पैसे की, धन की, बजट की, रुपए की अहमियत का पता है, मूल्य का पता है? ये समझ जब बच्चों में आ जाएगी तो यकीन मानिए वो फिजूल खर्ची नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे।

0: आपकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश पहले किशोर कुमार की आवाज में ज्वेल थी फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओ, अभी हम चर्चा कर रहे थे फिजूल खर्ची पर। हम जिस भी परिवेश में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है राष्ट्र हित का, देश प्रेम का। ये भावना बचपन से हर बच्चे के मन में होनी बहुत जरूरी है। हमारी भारत माता जिसकी रक्षा करने के लिए कितने ही वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। देश प्रेम की ये भावना नहीं, एक जज्बा है। सबसे पहले और सबसे ऊपर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म कसूर का एक गीत सुना। आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

हाँ, मैंने भी प्यार किया है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुताओ, आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के गौरवमयी इतिहास, ऐतिहासिक विकास, राजस्थान की संस्कृति और कला की। स्वतः यूं तो राजस्थान की संस्कृति को कौन नहीं जानता। इतिहास में हजारों वर्ष पुरानी जो हमारी यहाँ की सभ्यताएं हैं, वैदिक काल से लेकर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, राजपूत शासन, ब्रिटिश काल के दौरान हमारी यहाँ की संस्कृति और विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं और शासकों को हमारा इतिहास हमें बताता है। स्वतः सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, वैदिक काल से यह क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था और उस समय मौर्य और गुप्त साम्राज्य का प्रभाव वहाँ पे रहा था। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक उसके बाद मध्यकाल की जो शुरुआत हुई 600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, उस समय राजपूत शासकों का उदय हुआ। इसके साथ साथ परिहार, चौहान, गहलोत, राठौड़ जैसे अनेकों राजवंश वहाँ के शासक रहे और विदेशों से आने वाले मुगलों के साथ, राजाओं के साथ, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते रहे और हमारी यहाँ की सभ्यताओं को जीवित रखा। हमें बहुत बड़ा इतिहास के रूप में सभ्यता, संस्कृति और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी नीतियां मिली। स्वतः आधुनिक काल की अगर बात करें तो 1700 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का पतन, मराठों का प्रभाव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां, समझौते, संघर्ष और उसके बाद राजस्थान का एकीकरण। साथियों, इस काल में हमारे यहाँ की जो संस्कृति रही थी उसका पुनर्जागरण हुआ। पर्यटन विकास और सांस्कृतिक धरोहर हमें विरासत में मिली, उसका संरक्षण आज हम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हमारी गौरवमयी संस्कृति को जीवित रखें, सजीव रखें, आने वाली पीढ़ियों को हमारे संस्कार, हमारी कला, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वो सिखाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति और हमारी जो पहचान है वो हमारे देश से लेके पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ का आदर सम्मान, एक दूसरे की सहायता करना, आवभगत और मान सम्मान में हम सबसे आगे हैं।

आवाजें थी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की, गीत समीर का, संगीतकार जतिन ललित, फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। और आइए कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीतकार नुसरत फ़तेह अली खान, फिल्म का नाम है कच्चे धागे।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 MHz पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जानकारी, राजस्थानी रीति रिवाज, अरहर की खेती, गायों की देखभाल। इसके अलावा उपलब्ध होने पर मौसम की जानकारी और बाजार भाव भी बताई जाएंगी।

संध्या 7:45 पर भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म की जानकारी और गीत। रात 8:00 8:30 पर आप सुना करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। समाचार संध्या का वक्त रहता है रात्रि 8:45।

राजस्थानी लोकगीतों और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम गीत गंगा आप सुनेंगे रात्रि

रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे न्यूज इन इंग्लिश। रात्रि 11:10 पर हमारी इस सभा का समापन होगा। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, उनका विवरण और प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं, आइए सुने कार्यक्रम सिराय की।

ऑल इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। सारे भाना भरावां को हरजीत कौर दी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं कुछ बातां कुछ गीत प्रोग्राम विच बई चंगे चंगे गीत घिन के हाजिर हां। प्रोग्राम दे शुरू विच मैं तुहां को सुनवेंदी पई हां एक प्यार भरा गीत। ए प्यार जड़न थीवेंदा है ना, बस थीवेंदा है, प्यार कीता नहीं वेंदा। नजदीकियां प्यार विच बदल वेंदियां हैं ता दूरियां आपे मिटवेंदियां हैं। एक बहु प्यारा गीत इस प्यार तू चेते आंदा पिया है। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए। ते चस घिनो इस गीत दी मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां विच। ए गीत असां गिद्दा है फिल्म गुड्डी तू।

प्यार बहुत वड्डी नियामत है। ये तां तुसा गीत सुन के समझ ही गए होसो। ए है गुड्डी फिल्म दा गीत, कलाकार हन मोहम्मद रफी। हुण कुछ हसन हसावन दी गल करेंदे हां। मैं तुहा को एक गल सुनवेंदी हां। गल है हिक कंजूस दी। हिक कंजूस दे घर हिक दीवार मेहमान आए। उन्हें अपने पुत्र को आखा, वंज बाजार तू गोश्त घिन्ना। पुत्र हिक घंटे बाद वाला पर खाली हाथ जुलेंदा। कंजूस आधा है, गोश्त किडे है। पुत्र अगू आधा है, मैं गोश्त आले को आखा गोश्त देवन वास्ते। ओ आधा हुणे आखा इंजा उमदा गोश्त देवा जिवें मक्खन। मैं सोचा हिंदे कोलू चंगा मैं मक्खनी गिनचा। वल मैं गया स्टोर ते, मैं आखा मक्खन दे दियो। हूं आखा मैं तुहा को इंजा उमदा मक्खन देसा जिवें शहद होवे शहद। मैं सोचा हिंदे कोलू चंगा मैं शहद ही गिनचा। मैं आखा चलो शहद ही दे दियो। हुन्ने आखा एझा शहद देसा जिवें साफ सफाक पानी। वल मैं सोचा पानी ता मेरे घर विच ही बतेरा है। हुन पियो कंजूस के कहंदा है, शाबाशी है मेरे पुत्र, हिक दिन तू जरूर मेरा ना रोशन करे सा। पर हिक गलती कीती है ताए, हिक दुकान तू दूजी दुकान विच वंजन विच तेरी चप्पल घेस गई हो सी। ते पुत्र भी ता कंजूस पियो दा है ना। आधा है, इतना पागल काई ना मैं, चप्पल ता मैं मेहमान दी पा गया हाँ। तुहानू भी हसी आई ना। हुण मैं तुहा को सुनवेंदी पई हां एक बहु वधिया गीत जसबीर जस्सी दी आवाज विच।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1,096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
1: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय गृह

मंत्रालय और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24

0: 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जिला अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूं कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की

0: अपील की गई, साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दक ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने घड़साना थाने के एसआई रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और ANM भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही है। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। BSF के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर तीनों। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डाओं आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू फैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश के हल्का माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि भगति पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता ने मिलार ग्रिड बनावनो घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर कने बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे राखी जा प्रहरी सम्मेलन माई बोल रहा।

0: वे कहो कि ई ग्रिड रे जरिए सरहद माथेरा खतरा रो पूरी ताकतों मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: श्री शाह सरहदी हलका ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो का इरे जरिए सरहद माथे बसियोड़ा गांव रा लोगा नई केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजना मा रो फायदो मिल सकेला। वे कहो का सरहदी हलका माय ड्रोन न खत्म करण री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माय शुरू करतियो चावेला। गृहमंत्री कहो के प्रदेश में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊं बीएसएफ रो सुबी तो बधवा सके सरहदी हलका रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृहमंत्री सरहदों 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हलका री जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहाँ माए सरहद री हिफाजत उन जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो के साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलान और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करोड़ों रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इनो पहले गृहमंत्री सरहद माथे तैनात जवाना रो उमाव बधाता थका देश री हिफाजत माए वारा योगदान री सराहना कीनी। इ मौके वे सरहद माथे बनी चौकियां माए महिलाओं सारू नूवी बनाई जी 14 बैरकां ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृहमंत्री बीकानेर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकाराओं बातचीत कीनी। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माए फी मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। ई पाछे वठे जहाज उड़ान भरण लाकेला। हवाई अड्डाओं दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू भेजा वेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौड़ एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रे बारा माए विचार करण सारूई कहो। ध्यानजोग है कि 1088 एकड़ हलका माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डाओं हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री 3 विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो के आ हस्तियां रा मानू राजस्थान रो माथो ऊंचो भियो है। ध्यानजोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66 विभूतियां ने राष्ट्रपति भवन माए पद्म अलंकाराओं नवाजी ही श्यामाए राज्य रा समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने दुनिया माए ओलखाण दिरावन वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर माए पुगावन वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मान करी चियो हो। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC माध्यमिक शिक्षा विभाग माए 10 विषयां माए वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई ताई लियो चावेला। न्यारा न्यारा विषयां री परीक्षावां ने 4 ग्रुप माए बांटी ची है। प्रदेश माए किसाना ने नकली और अमानक बीजाऊं बचावन सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर माए आज खास अभियान चलायो। इन दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अहलकारां सागे मिलर

0: एकर फेरू सुन ली रहो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानू मिलर काम करण माथे जोर दिनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डाऊ आवता साल दिसंबर व्यावसायिक उड़ाना शुरू है जावेला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश रा कई हलका माए लू रो कोप श्रीगंगानगर माए 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम एंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनने सगले परिवारा ने भूरूभाई की घनी घनी राम राम, मोकली मोकली राम राम। ले आज तो नवीन भाई जी आ रहे हैं, श्रीपाल भाई जी आ रहे हैं, राम राम सा।
1: राम राम राम राम।
2: नवीन भाई ने भूरू भाई ने घना घना राम राम।
1: अरे सगला सुना नहीं आना भी
0: राम राम
1: राम राम सा। तो देखो आज आपने सके देखो कितना समझदार आदमी आप बुलाए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: श्रीपाल भाई जी
0: बिल्कुल।
1: एक है कि खेती की जानकारी रखे, ये जो दाणो हो अपने जितो भी अनाज हो इनकी जानकारी रखे, और जो मौसम है इनकी जानकारी सर रखे।
0: तो भाई जी ग्वालो तो गागी बात कर सी।
1: जब देखो आप चौपाल में
0: जी का चौपाल में आसी में तो बात खेती बाड़ी की कर सी।
1: पर यार गर्मी बहुत पड़े।
0: गर्मी तो भाई जी नो तो पोचाले तो।
1: अच्छा नो तो पोचाले
0: थे आकाशवाणी केंद्र अपने नवती पूर्ति मनाई हुए बिंगी। तो पहले तो था ना बधाई गणी गणी
1: अपने सारा सगला श्रोता ने।
0: सगला श्रोता ने बधाई, 90 साल पूरा हो गया अपना।
1: पूरा तो देखो 8 तारीख नो सी पण आपा मनान लाग रहे,
2: मनान लाग रहे। और ई कार्यक्रम के आयोजन के मां भुरु भाई जकी आपने नवीन जी को देखो योगदान हो, जकी आ मेहनत करी पूरा रात दिन तावड़ी के मई टिकिया को नी
0: और ओ
2: बड़ो प्रयास करियो।
0: ओ तावड़ो
2: ओ तावड़ो
1: मैं तो के आपने तो पूरा आकाशवाणी परिवार ही लाग रहे हो। सगा आपने तो के ब्याह भर को सु काम हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखो कोई भी आयोजन हुए नी ई तरह का तो आपने एक तो राजस्थान की जकी पिछाण नी बा आई रही है कि किसी भी आयोजन हुए नी बिना आपा इतना दिल नु समर्पित हो गए बनावा जको मिनी पिछाण जकी है बा अलग ही है।
0: और तो इसे कार्यक्रम सागे तो नवीन जी ओ जी को राजस्थान को लोक संगीत थे कार्यक्रम करियो। तो लोक संगीत ने जीवित रखना जरूरी है, लोक परंपरा ने जीवित रखना जरूरी है, लोक जी का रीति रिवाज है ना अपना अन्य जीवित रखना जरूरी।
1: आई तो मेन बात जी की है कि भाई लोक जी की संस्कृति है अपनी, अपनी राजस्थान की जी की संस्कृति है, अपनी जनता की दिला में जी की बसड़ी संस्कृति है नी हिवड़ा में। क्यों श्रीपाल भाई जी
2: बिल्कुल बिल्कुल हिवड़ा के मां बसेड़ी है, जबकि ये संस्कृति ने कला ने और आपने जकी पहचान ने आगे बढ़ाने खातर जका लोक कलाकार है लोक गीत गावे। देखो आपने ये प्रोग्राम में भी जगह बूंदी खान पार्टी जकी आई डी वह भी आपकी एक पहचान रखे पूरे राजस्थान के मां।
1: राजस्थान को नहीं श्रीपाल भाई जी मैं बताऊं, बूंदू खान जी तो
0: सारे विदेश
2: राजस्थानी गायकी के मां राजस्थानी गीत
1: अमेरिका केटा मैं तो कई देश बताए मन तो सुन
0: तो हर जगह भारतीय तो बसेड़ा है।
1: हाँ।
0: राजस्थान का लोग बसेड़ा है
1: जनता। अंग्रेज भी सुना है अपना गाना आजकल तो
0: आज
1: लोक गीत
0: आज तो। की कलात्मकता है बड़ी जोरगी है, वास्तव में बड़ा सुना गीत बाए गया और आए लोग ही है जिका अपनी संस्कृति ने जीवित कर रखे है।
1: ये जिका गीत अपना है नी ये गीत, हर गीत आपको एक संदेश देवे, कोई ना कोई बात करनी हुआ।
0: बिल्कुल।
1: अब जिया मुमल गायो है श्रीपाल भाई जी, तो मुमल जी को गानो है वो एक राजकुमारी है, राजकुमार की कहानी है।
2: अच्छा
1: है
2: तो थोड़ी सी बता दियो आपा भी सुन लिया।
1: आपन श्रद्धा तो देखो आपन ने कौन ध्यान जैसलमेर का महेंद्र नाम का एक राजकुमार है कोई।

0: बाने के मुंबल से प्रेम वो तो बांगे जिके सुंदर है नी बेंगो वर्णन कर रहे है का दांत जिका है दाड़म बर मतलब जिके अनार का दाना हुए नी बिया बिता सुना दांत है
1: ओहो
0: है और जिको शीश है नारियल वर्गो जिया नारियल हुई है लंबो या लंबो शीश तो सुंदरता को वर्णन है जी
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल अरे कलाकार जिका है कवि है वह तो सुंदरता की जी कल्पना जी है वह बहुत बड़ा चढ़ा के करे। आपने राजस्थान गए कवियों की या राजस्थानी कहानियों की भी विशेषता है कि बहुत बढ़िया भी जी पहचान है वह देखने न मिले।
2: और इतना पुराना जी के आज मान लो थे जी की बात बताइए बा कई सौ साल पुरानी या कई साल पुरानी है तो बिना जीवित गीत के माध्यम से आज भी
0: तो
2: आए जीवित कर रखे
0: गुरु भाई जी पीढ़ियों पीढ़ियों में चलती रहे ठीक है। मारी नानी की नानी गाती बहू नानी कनाई मारी माँ कनाई अब आगे आ गए यहाँ पीढ़ी दर
1: तो
0: पीढ़ी
1: आई
0: चलती
1: आपनी नवीन भाई आपने जो की सभ्यता है आपनी संस्कृति है अभी थे बात करी कि विदेशा में लोग जो है अंग्रेजी लोग है वे भी आपनी सभ्यता ने आगे बढ़ावे अपनावे एहरबाने चौखी लगे क्योंकि आपनी संस्कृति के माँ यह सारी चीज़ा शामिल है और आपनी संस्कृति पूरे विश्व स्तर के ऊपर इतनी प्रसिद्ध है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश
0: तो अपनी संस्कृति में मिठास है
1: मिठास
0: आपा के जिको मेहमान है नी बिन बिया देखा कि भैसा मार तो घर भगवान है
1: भगवान है प्यार प्रेम मान मनवार आव भगत आदर सत्कार ऐ सारी
0: अपना जिका त्योहार हुए मैं अपने के सिखावे
1: बिल्कुल
0: सारा कट्ठा हो गए
1: बिल्कुल
0: रल मिल गए
2: अपना रीति रिवाज है ब्याह शादी के माँ बात है एडो है आपा जद भी कट्ठा हुआ जे ओसर हुए तो डावनी है और है तो बिंग मत जितना भी रिश्तेदार आवे ऐसी की लोक रीतियां अपनी चल रही है वह कठे न कठे भाई समरसता बनाने वास्ते परिवार ने भेड़ो करने वास्ते एर कट्ठा हो गेर आपकी जी को कोई द्वेष रेड़ो भी हुआ या कोई नाराजगी हुए तो बिन दूर करने वास्ते ही बनाए है ताकि संगठित रहे
1: बिल्कुल गुरु भाई हर त्यौहार जो है नहीं कोई खास मकसद ले गया हुआ एक सीख ले गया हुआ संदेश ले गया हुआ और बिंगे माध्यम हूँ
2: बात
0: देखो
2: आपा
0: गुरु
2: बात
0: भाई जी
2: यानी बात
0: ये तो
2: जा रखे है मैं सुन लो
0: मैं जानू श्रीपाल भाई जी आवाज नहीं करे
2: कोई भजन सुना
0: भाई
2: दे
0: जी कोई भजन सुना दे बढ़िया से
1: सुनो
2: फिर बात जीता और कुछ
1: बिल्कुल गुरु भाई को कहो देखो करना ही पड़सी तो सुनो वो भजन।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: तो बुरु भाई, नवीन भाई, भजन आप सुनवायो राम निवास राव साथियों की आवाज में।
7: श्रीपाल भाजी, तो देखो जोर को सुनासी हैं। भजन की बात करो तो भजन तो ब्याह में भी
8: देखो, ब्याह में गीत होवे भाई जी।
7: और तो गीत भजन नहीं, गीत एक सा कोनी नहीं होएगा।
8: भजन अलग चीज होगी, गीत अलग होगी, क्यों रीति रिवाज की जिकी आप बात करानी।
7: तो जिका आप भगवान का अगर कोई गीत गावा, भजन नहीं।
6: देखो थे दोनों ही साचा हो थे, क्योंकि बडेरा आदमी हो, बात थारी दोनों की जायज है।
7: अच्छा।
6: आप की जगह के ब्याह गए माँ, गीत भी हुए भजन भी हुए। गीत राग, गीत राग ब्याह को देखो पहलो शब्द है। अरबिंग बाद में थे थारी जगह साचा हो भाई, भजन इं हो ब्याह को सारो काम हुआ। देखो पहल पोत आप गणेश जी बिठाना,
7: तो सब पहले कहने बुलावे
6: गणपति वंदन हुए गणेश जी ने, आप जो बोले बिरद विनायक।
7: मतलब विनायक जी विघ्नहर्ता थे मारा घरे पधारो। अब अगर मारा ये पूरा आयोजन में कोई भी विघ्न हुआ तो थे हर लिया।
6: हाँ? देखो नवीन भाई, लोक कला संस्कृति की अपन जब बात करें लाग रहा नहीं, तो आपने जितनी एक मान्यता है कि घर गए माँ से कितो ही पीस हो गए, क्यों पीस उठक को ब्याह में चीज है। अरे कह जके दिन बिना एक बैठ जाए नहीं गणेश जी करे आज है नहीं, तो आप ही आप काम सिद्ध होता है कारज सारा है। हाँ, यह बात है।
7: तो बिंग बाद में फिर की रस्म हुए?
8: रस्म तो ये है अभी ब्याह का, तो ये है पहला जे छोरी जी की आपका बयान टीक गया वह, फिर वह मायरो ले गया वह, तो मायरे की रस्म बिंग में आज।
7: श्रीपाल भाई जी, मायरो जी को है ए मतलब लड़की का पीरारा लेगा वह,
6: पीरारा लेगा वह। मायरे की जनते बात करी नहीं तो देखो नन्नी भाई को मायरो की तो प्रसिद्ध है भी है।
8: आपने तो देखो रिपीट कम बात चलन लागी, बाकी आनो वह यार भाई आपको जीतो।
7: गुरु भाई जी, एक बात कहूँगी, आपने समाज किया बुराई है आपा के हर चीज ने नहीं।

0: सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रीपाल भाई जी,
3: हाँ
2: ओ जी को गीत सुनाए है, हजारी गुल रो फूल
3: चंपा में ती अरे साथियों को।
2: अब देखो हजारी गुल रो फूल केसरिया, मतलब जिगो बींद बनेडो है, बिन कह के ओ लग गई है। इसो फूल जिम हजार पत्तिया है, जिया अपनो गेंदा को फूल को नहीं है।
3: हाँ हाँ।
2: केसरिया रंगो
3: हाँ
2: हाँ। के बींद बिसो लगे।
3: वाह।
2: तो ओ इन उद्देश्य हो है कि बीच टाइम जिगो आदमी ब्याह जिंगो हो रहे बिन थे एक तो राजा बना दे।
3: वाह।
2: क्योंकि बिंग जीवन को देखो कि तो महत्वपूर्ण दिन है, ब्याह तो जीवन में एक बार ही हो है।
3: बिल्कुल। ए तो आपना जी आपा बात करा राजस्थानी सभ्यता संस्कार की, तो संस्कार में शामिल है विवाह, एक संस्कार है।
2: तो जिको जी हमारे लोग चाहे दुल्हन है चाहे दुल्हो है, दोनों ने बेदिन है नहीं, आपा तो राजा रानी जी है लाख।
3: बिल्कुल।
2: और अपना संस्कार है।
3: बिल्कुल।
2: अरे राजा रानी की तो बात ठीक है, पानी को नहीं अपने कने
3: पानी बोतल में गाल रखे है गुरु भाई कनो ले गए थे।
2: तो है
3: तातो है। तो
4: पानी का मामला है गंभीरता को। पानी अब चाहे आपा पीने वाले पानी की बात करा, चाहे आपा बात करा सिंचाई जल की, तो अब किसान भाइयों ने भी आपा संदेश वही देना है कि भी पानी को जिको रख रखाव और पानी की जिकी बचत है बस सबसे जरूरी है।
3: बिल्कुल सही बात है।
4: सरकार अपनी जीती उसके वित्तीय मदद करण लाग रही है और आपा इसी नई नई जिकी तकनीक है बन अपनावा और ये पानी को जिको है वो संग्रहण करा ताकि आपनो सिंची क्षेत्र भी बढ़े और जिकी भविष्य के अंदर कोई किल्लत की जिकी समस्या अपने सामने खड़ी होनी है भी शुभ भी आपा सावचेत रहा।
3: देखो गुरु भाई अब थे पानी की बात करने लाग रहे हो तो आपने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी का है वहाँ जिको अब आपने पानी खातर एक अभियान जिको चलाए हुए है अभी, तो ई अभियान की जकी बात है विशेषताएं वह यह है कि भाई ज्यादा ज्यादा पानी को जो है वो अपने एक तो सदुपयोग करना है।
2: अच्छा।
3: दूसरो वो है कि पानी जो है जिका अपना पुराना जिका जोड़ा बनेड़ा है कोई तालाब बनेड़ा है तो बांगो जो है रख रखाव करनो बांग में संग्रहण करनो ये सारी चीजें, क्योंकि आपने कहावत ही है नहीं कि भाई जल है तो जीवन है।
2: देखो श्रीपाल भाई जी, पानी है ही, पानी एक ऐसी चीज है जिकी बूंद बूंद है नी बा घड़ो भरते है।
3: बिल्कुल घड़ो भरते
2: है। आपा के हो कि जिया जिका भी आदमी ने पानी ज्यादा हुआ नहीं वो सोचे पानी तो घड़ो ही है, आपने क्या आपा तो डोड़ो
3: घड़ो को
2: आपा कितो कितो यूज करो कितो ही मतलब वेस्टेज कर दो जी में।
3: आज की सोच है इन्हें आपा दूर करनी है और पानी जो है वो बचाना है।
4: लारे नवीन जी बताने लग गया कि अब जिया घर है तो घर की छात जी की साफ कर लियो आगे बिरखा सी तो भी समय के अंदर बेड़ो करेड़ो पानी बतावा के पूरे साल थे जिक दिन करान जी करे
2: पूरा साल पीस को बने थे।
3: अच्छा। है?
4: और बड़ो उत्तम जल है वो।
3: बिल्कुल बरसात को जो पानी में जो आजकल तो है पानी का जगह
4: पार्लर पानी जगह के
3: हाँ आपा पहला पानी पार्लर पानी कहता आजकल तो TDS है और है अंगमा पैरामीटर हो गया।
2: आपा के करा आपा पिया जो नहर में पानी वो आप सिद्ध पीला आजकल देखो नहर की बाकी बात किसी हो लेकिन पानी साफ तो आगे
3: पानी साफ करके छान गए।
2: आजकल आप कई दिनों देखने आ रहे हैं कई जिनावर आ जाए कई बार और कई बार गंदगी भी आ जाए।
3: एक दिन तो पूरू भाई मैंने बतावा आई पानी के ऊपर एक कहावत और बताई के आपने तो मान्यता है भाई रिश्तो करो जान गए पानी पियो छान गए
4: मतलब जरूरी है भाई जी। अब आप आपा बात करें रोज की स्वास्थ्य क्रांति की भी आप जैविक खेती करें तो कटे न कटे भोजन के साथ पानी की तो आवश्यकता बराबर है।
2: मैं बताऊंगी थाने एक खेत में अगर आप सिद्धो पानी लगावा दो खेत स्प्रिंकलर चला लियो थे।
3: हाँ अब
4: सिंची क्षेत्र बढ़ गयो
3: अब ये कई अपना
4: देखा ये तरीके से
2: पण जिका कन आ गयो नहीं पानी वो सोचे मेरे कन तो है मैं तो लगाऊं।
3: हाँ
2: आग लगे कौन सोचे।
3: बिल्कुल खेती वास्ते भी जो पानी को आपा ने नहीं दुरुपयोग नहीं करना सदुपयोग करना है। चाहे बार ड्रिप पद्धति
4: हो जाए चलो पानी ना दियो लेकिन पानी को बेचान उसके जिकन जरूरतमंद है बिना नहर के पानी की आवश्यकता हुआ आपके खेत में जिको पानी बचा गया वो आगे बेचान कर सका या अब डिग्गी के ऊपर आपन सब्सिडी मिले हर किसान भाई ने बिया तो लगभग सारा ही जिका है
2: कोशिश तो देखो सारे ही कर रहे हैं बनाने की फाइल लगाओ और डिग्गी बनाओ भी मैं है कि
4: जिकी भी प्रक्रिया है भी प्रक्रिया से डिग्गी बन सके सरकार की या मदद है आपने सब्सिडी भी देवे तो आपने करना चाहिए नहीं तो मैनियो लगा के अपन डिग्गी बना सके।
2: हाँ एक बार कच्ची पक्की जैसी भी बना लियो।
3: बिल्कुल सच्ची बात है कि धीरे धीरे खेती के माँ भी क्रांति आ रही है तकनीकी खेती
4: पानी ही जीती रोकांगा भी तो आपनो भविष्य जी को है वो एकदम सावचेत हो।

0: अपनो भविष्य जी है वो बढ़िया रहे वो
1: श्रीपाल
0: हमारा।
1: भाई जी, छोटी छोटी आदतें हैं। अब जी हाँ, मान लो आजकल लोग घर में भी आरओ फिल्टर लगावे है। अब कोई जी हाँ, मान लो कोई नए लिए, कई बार गलत आ जाए, अच्छा आ जाए अलग बात है, पर मान लो कोई आरओ फिल्टर लगावे तो भाई में पानी बहुत निकले,
2: हाँ
1: ठीक है, वो जी को खराब पानी निकले ना भी, मैं जी को वेस्ट हो
2: खारो
1: जाए,
2: पानी। हाँ
1: बेना के इकट्ठो कर लियो। अब थे पौधा में दोगा ना तो पौधा में दो खराब,
2: वहाँ खराब है वो
1: ठीक है,
2: खारो हुए पानी।
1: पर वैसे थे पोचा लगा लियो,
2: हाँ
1: है, गाड़ी धो लियो,
2: गाड़ी धो लियो
1: मोटरसाइकिल धो लियो,
2: बिल्कुल।
1: साइकिल धो लियो,
2: हाँ
1: एक काम
2: तो
1: तो कर, इसको घर की सफाई में तो
2: बिल्कुल
1: काम में ले इसको बिना
2: बिल्कुल
1: है।
2: बिल्कुल, थारे कहने का मतलब वो है भाई, बेकार नहीं जानो चाहिए पानी किसी भी सूरत
1: एक
2: में हमारे।
1: बूंद भी बेकार नहीं जानी चाहिए।
2: हाँ और वही संदेश जो है आपने मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, वही जो संदेश है जो आपा भी आपने श्रोताओं ताई पहुंचावा सा।
1: तो एक गीत सुना देता।
2: अब बात है पानी की करिए तो पानी वालों की गीत
1: हाँ
2: सुनाना पड़े सा,
1: हाँ लो
2: सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रीपाल भाई जी वो गीत बहुत बढ़िया सुनाए थे।
3: बिल्कुल सीमा मिश्रा साथियों को कहो गीत हो
2: अपने बाजार को भाव तो बता देता किसान भाई इंतजार करा अपना।
3: हाँ भाव आपने कने देखिए मंडी का फूगेड़ा है तो गंगानगर मंडी का बाजार भाव आपने ताई पहुंचे ऐसा मैं बताऊं कि कणक का जेका दड़ेगी कणक है बिना भाव रहा 2425 रुपया ले गए 2481 रुपया और चने का भाव खुलिया 5225 रुपया ले गए 5601 रुपया सरसों बिकी 7215 रुपया ले गए 7529 रुपया और ग्वार का भाव उगड़िया 5250 रुपया ले गए और 5595 रुपया और जो भी क्यों 2150 रुपया ले गए 23।

0: 517 रुपया गंगानगर मंडी का। एर यहीं आपने तई ए पूछे सा जैत सर मंडी का बाजार भाव सरसों का भाव रहा 6910 रुपया ले गए 7139 रुपया। एर कणक का जगह भाव आप 2325 रुपया ले गए 2640 रुपया। एर सूरतगढ़ मंडी का बाजार भाव रहा कणक का जगह भाव है वह रहा 2381 रुपया ले गए 2581 रुपया। एर चनो बिक्यो 5361 रुपया ले गए 5365 रुपया। सरसों बिकी 6913 रुपया ले गए 7375 रुपया। ग्वार बिक्यो 5350 रुपया ले गए 5591 रुपया।
1: श्रीपाल भाई जी भाव पड़ता पड़ता मन लगा वो जो नो तो पहने ये वजह थे अटकन ला रहे बीच में
0: देखो
2: सिर बांध रखे दोनों। हाँ। एक बात है विचार करने वाली कि भाई इंसान की जुनी यार आप अच्छिया में बैठा भी कोई दरखत लागे डाय कोई और लागे यार बोल के पानी मांग लिया बतला लिया आपना जी का पशुधन है
0: बिल्कुल
2: बिंग स्थिति आज बहुत खराब है बी वास्ते तो आपने यूं जाता जी तो अपने शरीर वास्ते अपना सावचेत है बितो ही सावचेत अपने किसान बयान है या जी का भी अपना पशुपालक भाई है बन सावचेत रहना जरूरी है।
1: जिका अपना पशुधन घर में देड़ो है मान लो है तो बे तो फिर भी आपा के ध्यान रख लिया पर जिका आवारा आपा कह दे आवारा तो के कहेंगे जिका निराश्रित कह दो जिका पशु है जिका मान लो आपने
2: बाखड़ा हो जाए बाखड़ा हो जाए कोई दूध देने वाला नहीं है
1: कठे भी है तो माने के माने खाने तो देखो चलो की ना की मिल जाए चलो फिर भी मिल जाए पर पानी की बहुत दिक्कत
0: जरूरी है सा ई गर्मी है मां ई बड़बड़ती लाए गए मां देखो पानी है नहीं वो तो अनबोल जीवा वास्ते पशुओं वास्ते बहुत ही जरूरी है
1: लोग की बनाईडी हो नहीं खड़ी बेने के वही टाइम है थे साफ सफाई कर गए बेने थे एक दो दिन में पाछी देखता रहो कि बरेड़ी है कौन बरेड़ी है क्योंकि पानी की ज्यादा जरूरत पड़े आपने ना ज्यादा पशु ने क्योंकि पशु रहे बारह तापमान 45 डिग्री है अंदर तो फिर ही 10 डिग्री अंतर आ जाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप तो पंखो चला लिया कूलर चला लिया बारह जी को पशु है
0: वो तो अनबोल जीव है।
2: आप बात करी रीति की अपना जी का रीति रिवाज है बेचारता है बी साहब आपनो जी को धर्म है धर्म जो कहना आप बोल दिया कि आपनो धर्म अपने माइता हूँ अपने मायो कि भाई ई गर्मी का माँ अपन ने चिड़ी काग लांग ही करना है बंग ही खेड़ वर्गी राखनी है बां वास्ते भी पानी की व्यवस्था
1: आज मारे आकाशवाणी में नहीं हाँ। चार पांच दरखत है नहीं छिया रहा बां में देख गए तसलिया यहाँ बांध गए बढ़िया साफ
2: परिंडा लगाने लग रहा
1: लगा दिया मैं हट है
0: हाँ मैं देखा चिड़ी का गला पानी भी पिया
2: असली धर्म वो है
1: वही है तो
2: ई हिसाब ही गांव में मां जी का युवा साथी है भाई संगठन बने आजकल हर जगह क्योंकि आगे देखो सावनानो है जन दरखत लगा सी
1: ठीक है
2: और आपने हरिया दरखत लाग सी अब जिका लागे डायबंग नीचे आप परिंडा बांधा आपने चिड़ी कागलां वास्ते जिगिया बनावा जिको पशु धन अपनो जिको थे के निराश्रित है बंगे हरिया तुड़ी की व्यवस्था करा पिंगे सागे पिंगे जिके पानी की खेली है बा बनावा खेलां जठा बनेड़ी है बने साफ सुथरो करा एर बंग मां नित प्रतिदिन आप गए जिम्मेवारी के हिसाब से भाई रोज की देखो एक आदमी ने समय मिलना बहुत दूर हो गया
1: ड्यूटी बांध लो
2: हाँ ड्यूटी बांध लो यार एक जनों वहाँ वास्ते पानी की व्यवस्था कर दे एक कोई हरे थोड़ी की व्यवस्था कर दे इन सब हालांकि अब जी का जागरूक लोग है वे गौशाला में भी आपको कर गया वह योगदान यार बहुत
1: तो आई तो कूं भुरु भाई जी गौशाला में तो फिर भी व्यवस्था है जी का बारे पशु है नहीं
2: बिल्कुल
1: मैं तो कूं थे जितनी बार दिन में पानी पियो नहीं
2: तो बड़ो ही पुण्य को काम है बड़ो धर्म को काम है इन ही धर्म के योग्य असली पर आपा ने
1: गीत सुनो सा
0: सुनो सा

0: एक लाइन सुनाइए गीत की, क्यों आना पीनी चाह मिठी बीच में। ए श्रीपाल जी में कौन धने बदमाशी तो करे है, पर देखो जी आज की बात जी आपा करी भी सच्ची सच्ची सारी बात है। आपा के पशुओं को ध्यान रखो, गर्मी को ध्यान रखो, खुद को ध्यान रखो, पशुओं को रखो, अरे आपका पूरा परिवार में टाबरा हो बुढ़ा हो सबको ध्यान रखो। अब देखो टेम हो गया, बुरु भाई जी चलना क्या,
1: चलो
0: श्रीपाल भाई जी चलो सा,
2: राम राम
0: जी, राम राम
2: राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत।

गीत गाता चल। इस फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी आरती मुखर्जी, जसपाल सिंह और साथियों की। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। आइए सुने सरगम फिल्म का ये भक्ति गीत। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्रेम जाल। इस फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना, अनूप जलोटा, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ थी। इसी के साथ भक्ति रचनाओं का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1971 में आई फिल्म आप आई बहार आई के कुछ गीत। इस फिल्म के निर्देशक थे मोहन कुमार और संवाद लेखक थे वेद राही।

स्वतः सन 1971 में रिलीज़ हुई फिल्म आप आए बाहर आई के निर्माता और निर्देशक के रूप में मोहन कुमार ने अपना योगदान दिया था। इस फिल्म में अभिनेता राजेंद्र कुमार, साधना अभिनेत्री और प्रेम चोपड़ा ने मुख्य रूप से अपना अभिनय दिखाया था। राजेंद्र कुमार जो कि रोहित वर्मा के रूप में उन्होंने अपना अभिनय दिखाया था, साधना जिन्होंने नीना बख्शी के रूप में इस फिल्म में काम किया था, वहीं प्रेम चोपड़ा को कुमार नाम से जाना गया और विश्की के रूप में राजेंद्र नाथ और बख्शी के रूप में राज मेहरा ने अपना अभिनय दिखाया था।

श्रोताओ, एक ही फिल्म से एक कार्यक्रम में आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आज आप सुन रहे हैं फिल्म आप आए बाहर आए के गीत। साथियों, इस फिल्म में संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, जो कि रोहित की भूमिका निभा रहे थे, राजेंद्र नाथ, जिन्होंने विस्की के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, और साथ ही प्रेम चोपड़ा, जिनका नाम इस फिल्म में था कुमार, ये तीनों बचपन के दोस्त होते हैं। एक बार एक दोस्त विस्की के साथ कहीं जाते समय रोहित सुंदर सी एक छवि नीना की देखते हैं और उनसे मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें प्यार हो जाता है। उसके बाद वो उसके पिता यानी राज मेहरा से मिलता है, जहां उनका ठीक से परिचय होता है और वह भी उससे प्यार करने लगती है। अनजाने में कुमार भी नीना से शादी के लिए अपना प्रस्ताव भेजता है, लेकिन वह न केवल इसे स्वीकार करता है बल्कि इसका उपहास भी बनाती है। कुमार नाराज हो जाता है और वो बदला लेने की योजना बनाता है। नीना और रोहित की शादी के कुछ समय पहले जब आधिकारिक रूप से शादी तय हो जाती है, तो रोहित और कुमार दोनों आपस में

एक दूसरे से वैमनस्य रखते हैं, दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, उनका आखिरकार झगड़ा होता है और कुमार अपनी बाईं आंख की दृष्टि खो देता है। यह महसूस करते हुए कि अब वह रोहित के लायक नहीं है, नीना उससे शादी करने से इनकार कर देगी। नीना को जब पता चलता है कि वह कुमार के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, रोहित उसे ऐसा करने से रोकता है और शिव मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। रोहित बच्चे को अपने बेटे के रूप में पालता है। कुमार को जब ज्ञात होता है और वो एक अपराधी साबित हो जाता है तो रोहित के पास पैसा मांगने जाता है, और जब वह और रोहित दोनों आपस में झगड़ते हैं, दोनों में बहस हो जाती है, वो ये जानकारी जगजाहिर कर देता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। कुमार चुपके से इस जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। एक दिन वो रोहित के बेटे का अपहरण कर लेता है। रोहित अपने बेटे को वापस पाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, अपने विवाद को खत्म करने के लिए, अपने बेटे को वापस पाने के लिए उसके पास जाता है। उनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में रोहित बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन तब नीना आ जाती है और कुमार को उसी की बंदूक से मार देती है।

श्रोताओं, फिल्म आप आई बाहर आई। इस फिल्म के गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए। गीतों में आवाज देने वाले महान कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। तुमको भी ऐसा कुछ होता है, इस गीत में किशोर कुमार ने भी अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर के साथ। और गीत तारे कितने नील गगन पे तारे, इसमें हेमलता और किशोर कुमार ने, मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ें दी थी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आप आए बाहर आए के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नए रंग नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियार पन्नीर सेल्वम ने रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीते। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को कुश्ती के दांवपेचों के साथ, जहां वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। जानते हैं आज किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहुंचकर तिरंगा लहराया।
1: मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के ओस्कोनबाई 1 अब्दिस आमतोव को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की येरखान अबिल को 7-6 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 92 किलोग्राम कैटेगरी में पुनीत कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वे फाइनल में किर्गिस्तान के उलुगबेक सोरोनबेकोव के हाथों 12-1 से हार गए। 125 किलोग्राम वर्ग में लकी को भी रजत पदक मिला, जबकि सचिन मोर ने 86 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के बोबुरवेक रजम्बोएव को 4-1 से परास्त कर कांस्य पदक जीता। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि लगातार वियतनाम में भारतीय पहलवानों का दबदबा जारी है। और अब कुश्ती की रिंग के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। लीग के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और आज पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 12वें ओवर में 3 विकेट खोकर 115 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आप सभी जानते हैं कि इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता के साथ एक और मौका मिलेगा फाइनल के लिए अंतिम दांवपेच लगाने का। आईपीएल के एलिमिनेटर में कल सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स सामने सामने होंगे और दूसरे क्वालिफायर में प्रवेश के लिए अपने जोर आजमाते नजर आएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं दोनों टीमों की तैयारियों का आकलन करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस नॉकआउट मुकाबले का विजेता आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगा। अगर दोनों टीम के इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो एसआरएच लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर थी, जिसने टीम ने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते थे। वहीं आरआर 14 मुकाबलों में से 8 में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो हैदराबाद का पलड़ा काफी भारी है। दोनों टीमों का अब तक 23 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 बार बाजी हैदराबाद ने मारी है, जबकि 9 बार राजस्थान के हाथों जीत लगी है। वहीं इस सीजन के दोनों मुकाबलों में राजस्थान को हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो हैदराबाद की मुख्य ताकत उसकी बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने बल्ले से इस सीजन में खूब धूम मचाई है। क्लासन अब तक इस सीजन में 606, ईशान किशन 569 और अभिषेक शर्मा 563 रन बना चुके हैं और शानदार लय में हैं। इनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन और अनिकेत वर्मा मध्यक्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस के कंधों पर है, जिनको हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और प्रफुल हिंगे का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स को सबसे अधिक उम्मीद अपने एक्स फैक्टर युवा वैभव सूर्यवंशी से होगी। वैभव इस सीजन में अब तक 232 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भी वैभव का भरपूर साथ देते आए हैं। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में टीम को इस सलामी जोड़ी से बहुत उम्मीदें होंगी। कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरैल,

0: शिमरॉन हेटमेयर और अनुभवी रविंद्र जडेजा से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर टीम के गेंदबाजी क्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब तक इस सीजन में 21 विकेट झटक चुके हैं, जिनको इस मैदान पर रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे से भरपूर साथ मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर पर सबकी नजरें होंगी, जो मजबूत बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो लीग राउंड के बाद अब आईपीएल तैयार है नॉकआउट के अपने जलवे के लिए, जहां पर देखना होगा कि कल वैभव जीत का सूर्योदय करते हैं या फिर हैदराबाद जीत का अभिषेक करता हुआ नजर आएगा। और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं चेस के काले सफेद खानों के बीच चली जा रही चालों में, जहां राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पनीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीतकर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक जीता, जबकि बिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिक वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उधर नॉर्वे में नॉर्वे शतरंज 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई, जहां आर प्रज्ञानानंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने अपने मुकाबलों को ड्रॉ के साथ शुरू किया।
2: भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेन जुन को शिकस्त दी। प्रज्ञानंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ ट्राई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, जबकि गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। कार्लसन पे फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित हुई। महिला टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेन जुन को दिव्या देशमुख ने ट्राई ब्रेकर में हरा दिया। वहीं बीबी सारा असो बाएबा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर एक खिलाड़ी कुनेरू हम्पी को मात दी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में भी अपनी चालों के बीच तमाम नतीजे लेकर के आते हुए, और अब बात करते हैं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जो आज से शुरू हो गया है। जानते हैं आज प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
3: स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज पांचवी वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी को सीधे गेम में हराकर सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गईं। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का अगला मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष डबल्स जोड़ी भी शुरुआती दौर में चेन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ की अमेरिका की जोड़ी को 26-28, 21-15, 21-13 से हरा कर अगले दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी अगले दौर में ली झे हुई और यांग पो स्वान की चीनी ताइपे की जोड़ी तथा ली यू यांग और हुआंग डी की चीन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी 65 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स मुकाबले में विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ 21-11, 14-21, 12-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्नति हुड्डा भी महिला सिंगल्स में मोका मियाजाकी के हाथों 14-21, 10-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। महिला डबल्स में भारत की कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी भी पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिग्स की जोड़ी से हारकर बाहर हो गईं। अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम भी चांग चिंग हुई और यांग चिंग टुन की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने पुरुष डबल्स में भारत के हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को हराया, जबकि मिक्स डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे पहले दौर के मुकाबले में यांग पो हान और हु लिंग फांग की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गईं। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैंप।
1: और बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की, जहां इस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डोमिनेर ने कॉन्स्टेंटिन फ्रेंड

0: जेन और रॉबिन हस की जोड़ी को 6-3, 4-6, 6-3 से हरा दिया है। महिला सिंगल्स में आर्यन सबालेंका का मुकाबला जैसिका के बीच रहा, जिसमें आर्यना ने 6-4, 6-2 से बाजी मारी। भारत के यूकी भावरी और माइकल वीनस की जोड़ी अब से कुछ देर बाद टेनिस कोर्ट में नजर आएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत की 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। यह खेल 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। इस विश्व चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 114 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल है। श्री मांडविया ने विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि योगासन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: ये थे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और अब रुक करते हैं रांची का, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 कल समाप्त हो गई। सुनते हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
2: क्लीन स्टार्ट देव गुरिंदरवीर सिंह गोज ब्लेजिंग। इट इज गुरिंदरवीर सिंह, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, ही ब्लेजेस अवे। दिस इज नॉट फिनिश्ड येट, दैट्स व्हाट ही सेज।
3: गुरविंदर सिंह इस प्रतियोगिता के सबसे चर्चित नाम रहे। गुरविंदर सिंह रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। गुरविंदर की तरह ही अपनी रफ्तार से ऐसा ही एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विशाल टीके ने।
2: So now the first 10 meters, Vishal TK will push himself. Look out for lane number 4 once again, Vishal TK. He's taken that lead out here. This is going to be a national record, 45.12. He's going blazing away. Vishal, Vishal, and Vishal it is who takes it away. 44.98.
3: विशाल दिग्गज एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 मीटर में 45 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। विशाल ने 44.98 सेकंड के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड टूटा पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में, जहां देव मीणा और कुलदीप कुमार ने एक रोमांचक मुकाबले में एक साथ 5.45 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक होने का गौरव प्राप्त किया।
2: And it's a national record. It's a national record at 5.42 meters. It's a national record once again out here at the Birsa Munda Stadium. No emotions, no emotions at all from this boy. Into the runway like a 707. There he goes into the skies and he knows that the national record is his.
3: इन तीनों कीर्तिमानों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में न सिर्फ भारत की बढ़ती हुई धाक को साबित किया है, बल्कि ये बता दिया है कि अब इन खिलाड़ियों की विश्व के कई और स्थापित कीर्तिमानों पर नजर है। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर सट चुकी है ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के पोडियम की तरफ। और श्रोताओं, अब समय भी हो गया है आपसे विदा लेने का। आप इस कार्यक्रम पर अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के

0: लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।

0: Counterterrorism is a significant pillar of
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4,000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए

0: सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration.

कवे के कंथला किरको राख जे, हिरण किसा घी खाए। कंथला किरको राख जे, हिरण किसा घी खाए। आक चबे पवन बखे, दौड़ा घोड़ा आगा जाए। गोरबंद कार्यक्रम सुनिए सगले परिवार ने आज श्रीपाल सारस्वतरा मोकला मोकला राम राम सा लो सा हाजिरा थारी मनपसंद रो हिवड़े सू जुड़ेडो एर मीठो सो कार्यक्रम गोरबंद लेर कागदिया थारा पूछे है मेल जका है वे भी थारा पूछण लाग रहा है एर की जका व्हाट्सअप जका ग्रुप गैमा फरमाइश लिखकर आपने बेली साथियां भेजी है वे भी जरूर कार्यक्रम में शामिल करांगा। अब कार्यक्रम की शुरुआत करा सा ई गीत कैसा गया।

सुनो सा गीत सीमा मिश्रा साथियों की आवाज में, फरमाइश आपने ताई पूछी है सा। लिखे के गौरबंद पेश करने वाला ने मोकली सारी रामा श्यामा कार्यक्रम सुन लग रहा, बहुत ही अच्छो लागे। हनुमानगढ़ फाजिलका बस स्टैंड से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, हरमदन लाल वर्मा, कोई भी राजस्थानी गीत माए मारी फरमाइश जकी है बते शामिल करो सा। मैं भी तो सूरतगढ़ मूल रूप हूँ रहने वाला हाँ, पर अबार में

सुनो सा गीत सीमा मिश्रा साथी अंगी आवाज में फरमाइश आपने ताई पूछी है सा लिखे के गौरबंद पेश करने वाला ने मोकली सारी रामा श्यामा कार्यक्रम सुन लग रहा बहुत ही अच्छो लागे हनुमानगढ़ फाजिलका बस स्टैंड से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा हरमदन लाल वर्मा कोई भी राजस्थानी गीत माए मारी फरमाइश जकी है वते शामिल करो सा मैं बिया तो सूरतगढ़ मूल रूपों रहने वाला हाँ पर अबार में गैंगटोक सिक्किम बठा भूपेंद्र मिशन परबजोत मिशन एरबे भी जानवी का वासा। देखो भूपेंद्र भाई साहब को इतो लगाव रेडियो शो जगह की कोई सीमा नहीं है सा दिलों जुड़ाव जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रेम कोई मुकाबलो नहीं है सा। गौरबंद कार्यक्रम में हमारी फरमाइश शामिल करो विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश युद्धव कड़वासरा कुंदन जाखड़ एंड लीलाधर स्वामी आपने लिखे ऐसा कृष्ण माइल अंग सागे एर कीड़ू राम जोया हनुमान सारण एर सुनील पाईवाल शर्मा गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ शो एर सागे मेगी बात लिखिया। देखो सा मेगी बात नेगी बात है कितनी मिलती जुलती है दोनों ही बहुत अच्छी क्योंकि ई बड़बड़ती लाए में ई गर्मी में मेघो तो नाम ले ही मुँह भरी जय जिसो रोसो हुए के पाँव पिछाने पग रखी ए नैन पिछाने ने के पाँव पिछाने पग रखी नैन पिछाने ने चोर पिछाने चोर नैर मोर पिछाने मे आशा सच्ची बात है सा। वडिंग खेड़ा पंजाब से हूँ मिंटू टॉमस बिल्की लवली आरती अरोड़ा एर पलारी छत्तीसगढ़ से हूँ नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद प्राग टेलर तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन लिखे कोई भी गीत में मारो नाम शामिल करियो बिल्कुल हो चुके सा। मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक रामा श्यामा सागे उत्तम नगर दिल्ली से हूँ बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल अरभानु प्रकाश गांव गमडिया चुन जगदीश डोकिया प्रमिला डोकिया ज्योति सरिता तमन्ना सचिन विष्णु शिवम डोकिया इवाधारनिया एर आंगा साथी लिखे गए गौरबंद पेश करने वाला भाई श्रीपाल जी ने मारी रामा श्यामा भजन थे माने जो बिल्कुल थाने भजन सुनावांगा सा कार्यक्रम में थे भण्यारो MLB रोड ग्वालियर शू सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्य खुराना आरव खुराना मेघा आशीष अनुज छोटू एर SK पप्पी मानपुर साबित मुरादाबाद से हूँ शेख जियाउर रहमान शेख अताउर रहमान शेख हबीबुर रहमान गोल्डन रेडियो श्रोता संघ भंजन उत्तर प्रदेश से हूँ राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा हकीतपुरा मऊ से हूँ मुन्ना भाई सोनकार विंकी सोनकार आर्यन कृष्णा RPU सोनकार गांव नथाना पंजाब से हूँ हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीतार गीता गौरबंद राजस्थानी कार्यक्रम में हमारी फरमाइश शामिल करो। अब से पहला सब से पहला गौरबंद पेशकर्ता ने मोकली सारी रामा श्यामा कार्यक्रम सुन लाग रहा माइड भाषा रो कार्यक्रम जो है चोखो लागे सा घणो एर मोकलो सारो धन्यवाद चकपंद्रा PS से सरवजीत सिंह जोसन सरवजीत कौर जोसन गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल जोसन वैंकूवर कनाडा से अंग सागे है लिखण वाला रोबिन सिंह जोसन चक 78 LNP शू डॉक्टर विचित्र सिंह एर मंग पोतो सागे अरविंदर सिंह सांगली गजेत सैर छू अल्फाज हुजरे सेफुला सबात कीर्तु हुजरे रेहान सिख कोई भी गीत बिल्कुल थाने सुनावांगा सा। गांव हांडीखेड़ा सर हरियाणा शू राधेश्याम शर्मा इंद्रा शर्मा सार्थक शर्मा राकेश शर्मा मुकेश शर्मा धर्मपाल मोकली सारी रामा श्यामा मीठी मीठी आवाज आने जकी गौरबंदगी लागे बहुत ही पसंद आवे सगला ने रामा श्यामा

की है। हर मंगलवार ने कह गोरबंद कार्यक्रम में लगो लग सुना कार्यक्रम में गीत भजन हंसनी और कहानी बहुत ही दाया वे लिखण आए गांव खोखरा वाली गंगानगर शिव विनोद बारासा विशाल बारासा विकास बारासा रोशनी बारासा सगुन बारासा रणजीत राम जी कल्याणा बैरवाला खुद शिव बलवंत जाखड़ ममता जाखड़ नैना प्रिया जाखड़ हिमानी जाखड़ शिवम जाखड़ एर आदर्श नगर मलोट पंजाब शिव राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा निवान शर्मा हनुमानगढ़ टाउन शिव सुल्तान सिंह तरड़ कृष्णा मुकेश तरड़ रामचंद्र तरड़ एर कपिल देव तरड़ कांता चौधरी कोई भी गीत कथे मैंने सुनाइयो जनकपुरी सहारनपुर शिव जॉन डिकोस्टो रोजी डिकोस्टो पर डिकोस्टो विलिस डिकोस्टो कोई भी राजस्थानी गीत गा बिल्कुल एर अब ए आ चुका सा हीरा वाली फाजिलका पंजाब शिव अपना नियमित श्रोता है ए भी सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा सरुण रेणवा हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम किरोड़ीवाल रामा श्याम सागर लिखे गौरबंद कार्यक्रम में सुनन लाग रहा लारलो कार्यक्रम भी आने बहुत ही अच्छो लागो एर गर्मी जकी कह बहुत पड़न लाग रही है तो थाने में थे माने कोई गीत जो है वो सुनाइयो बिल्कुल गीत थाने सुना पहला वही काम करा आप।

कोनी डरूं सा भलाई काटो अखियां। सुलोचना खमीर को गाइडो गीत ते सुनो एर फरमाइश आपने ताई पहुंची ऐसा अलादीन धुंदाड़वी गांव धुंदाड़ा तहसील लूणी एर जोधपुर से के गौर बंद कार्यक्रम हाजिर करनियों ने नमस्कार खमा गणी एर वो कार्यक्रम जो है वो में लगो लग सुना मन बहुत ही अच्छे अच्छो लगे एर कार्यक्रम के साग सागे खेती बाड़ी की जगह जानकारी है भाभीया ने बहुत बढ़िया लगे सा एर लारलो कार्यक्रम भी आने फूटरो लागे बिल्कुल सा अच्छो लाग सी कार्यक्रम से सुनता रहो। पटेल नगर मलोट पंजाब से हूँ डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया एर गुड्डू गाँव लोगढ़ ठाकुरों वाला छूँ सवन सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनोद सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह कोई भी गीत कथे मैंने सुना दियो अरे नाम जो है वो थे मारो जरूर शामिल करियो सा ओ आपने ताई कागद पूछो है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साहब राई मेराजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से बाटापारा दत्रेगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा बारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोकेलाल वर्मा एर गांव रामपुरा नोला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन शकीला डीडन अनवर संदीप अकू बावरा गायत्री मौली बावरा एर आंगा साथी कोई भी गीत कथे माने सुना दियो गौरबंद कार्यक्रम है लगो लगो सुने आना अच्छो लागे। चंडीगढ़ से धनराज बाबू एर सोहन जी जांगिड़ चेतन जी सारसुआ राजेंद्र कृष्ण कोई भी गीत थे माने सुनाइयो सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत की फरमाइश आपने लिखकर भेजी ऐसा लिखकर नाला है वार्ड नंबर 6 सिरसला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमल सोनगरा कार्तिक सोनगरा एरांगो परिवार भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा पूजा परिहार धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौसाद सलमानी बेबी आलिया एर आयन बाबू दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुणाल मेहरा एर आंगा साथी गांव रामपुरा मटोरिया से देखो मुरारी लाल जी भी आ गया एर आंग सागे अमन रमन तनिषा रवि शर्मा सीताराम मदन लाल शर्मा कोई भी गीत कथे माने सुनाइयो बिल्कुल सुना सा बठिंडा रोड डब्बा वाली सिंह राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग एतानिया नारंग हनुमानगढ़ राजस्थान सिंह रज्जाक मोहम्मद खान समीम बेगम इमरान खां इरफान खां एजिसान खां गौरबंद कार्यक्रम मन बहुत ही अच्छो लागे सा गीत थे माने सुनाइयो डानी लाल खां सिंह जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमा बानो विनोद खां मुखराम जी एर आरिफ खान इयान खान अरशद खान अरमान खान फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशाल खेड़ा विशु खेड़ा लाडी खेड़ा शालिनी खेड़ा टिवंशी वाणी एर आर वी खेड़ा जीवन सिंह बूक गीत किशो ही सुना दियो कार्यक्रम में मारो मेल शामिल करियो वासा धर्मपाल जी भारती को गाइडो गीत बिल्कुल सुनाता ही रे वासा गांव बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता एर डिंपल देवांगन दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुनार मेहरा उमर खेड़ महाराष्ट्र मेर नगर से अभिजीत गवाणकर राही श्रीमती सरिता गवाणकर प्रमिला सिद्धांत गवाणकर अर्जुन गवाणकर टुक टुक वैशाली शैलेश गवाणकर सुमित गवाणकर कुमारी धवनी गवाणकर परी प्रिंस एकास गवाणकर रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा

ठहर। सागर मध्य प्रदेश, लिखण वाला है चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर, जयपाल यादव, कोई भी गीत कथे माने सुनाई हो। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश हूँ। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति बहन शाह, सुरभि शाह, सुन शाह, मंगला बहन शाह, राजेंद्र जी शाह। कार्यक्रम बहुत ही अच्छो लगे, लगो लग सुना वासा। कागद आपने ताई पूछा है, मेल भी पूछे है। अलीका डब्बा वाले शिव बसंत सिंह, चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी को मेल आपने ताई पूछो ऐसा। एर वार्ड नंबर 10 सूरतगढ़ शिव, भास्कर, दौलत, पंकज, आरती, अंजलि, ज्योति, आराध्या, दीक्षा, गंगा, भावना, एर अंगे परिवार का लोग लिखे। कार्यक्रम सुना मन बहुत ही अच्छो लागे सा। और मारा नाम से बोलो ना बोलो, दौलत लिखे के मारी गंगा बुआ को नाम थे जरूर बोलियो। बिल्कुल, हो थारो नाम बोल दियो, बनिया रहो कार्यक्रम गेमा। अब पहला सुना ओ गीत।

सुनो सा गीत अरे अबे मेल जका है बे थरा पूछड़ा है। करा शुरुआत बाबा कुटीर रायगढ़ से लिखन वाला है शिव कुमार चौहान सुक्रांति चौहान एर उत्कर्ष चौहान। सरदना मेरठ से हूँ अनिल सेन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवम जैन दिग्दर्शन भाई एर अंगा साथी। शनि मंदिर चौक खंडवा से हूँ दुर्गा प्रसाद सैनी अनीता सैनी गौरव सैनी ईशान सैनी। कोटली पंजाब से हूँ यादविंदर सिंह सुखविंदर सिंह। जिंद हरियाणा से हूँ जसवीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर एर आंगा साथी। कोई भी गीत कहते मैंने सुनाई हो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत गिल एर आंगा साथी। ओ देखो मेल आपने ताई पूछू ऐसा सारा हूँ आई अरदास है आपने सुन ना लाऊँ कह जखो आपने व्हाट्सएप के ऊपर संदेश भेजो तो मेल मत भेजो सा क्योंकि आपना जगह सुनने वाला बेली साथी और है मगर सारा का नाम आप शामिल कर लिया। वो मेल आपने ताई पूछो ऐसा लिखने वाला है आपना साथी सनावत सिंह शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना एर अंगा साथी। ओ मेल आपने ताई पूछो है बीस तीस मेल जिका है कट्ठा आपने ताई पूछे ऐसा एक ही नाम तो सारा हूं आई उम्मीद करा के बार बार जो है वो मत भेजो सा कागज भी थारा पूछा है आप शामिल करा दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली जुनेब अब्बासी एर डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीए राधिका गजबीए बेबी अनिस्का एतन में गजबीए रायण से बनवारीलाल जयपाल विमला जयपाल सोनू जयपाल ममता जयपाल मोक्ष दीक्षा सुशांत एर विक्रम जयपाल कागज बहुत ही फूट रोसो बना के आपने ताई भेजो ऐसा कार्यक्रम में सुन लग रहा मन बहुत ही अच्छो लागे एर लारलो कार्यक्रम भी मैं सुनियो मन बहुत ही अच्छो लागो। लिखने वाला है साधुल शहर से राम कुमार रेवाड़ एर चंद्रकला रेवाड़। मेल आपने ताई पूछो ऐसा रायसिंह नगर से कार्यक्रम सुना मन बहुत ही चोखो लागे लिखने वाला है सोन लाल जांगिड़ एर आंगा साथी गांव चैनपुर।

सुनो सा गीत गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली छूँ तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ छूँ राहुल खुराना रचिता खुराना के सूरीदान खुराना गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर छूँ सैयद मसरूर साइना अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सदाम घनी सारी रामा श्यामा के सागे मेल अपन मांडियो ऐसा गोवर्धन दास कृष्णा देवी संगरिया से भोपालगढ़ जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी अंकित चौधरी गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी सौरभ डूडी छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई फूलवाले जूही इकबाल सफद आरजू इमरान अहमद फूलवाले दिल्ली से आमना नसरीन रंग परिवार का लोग तहसील बादरा से गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारीलाल शर्मा ममता मीतू कीतू अक्षय महावीर लोहरा आयुष डिंपल ईशान अनामिका एर अंग परिवार का लोग गांव नाई वाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा एर अलका मिड्डा संगरिया छूँ श्याम मिड्डा सुमन मिड्डा एरंग परिवार का लोग कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर प्रमोद यमेकर प्रदीप यमेकर हनुमान तिवाड़ी मंजूबाला दीक्षा तिवाड़ी राकेश पारिक रेखा पारिक ऋतु कार्तिक पारिक एर ओविका पारिक धरती तपे आकाश तपे रोहिणी रोवे नैन नो तपो तपे तो लागसी सावण में झरनों बैन वासा लिखो कर नो तपा लाग रे सातावड़िया को ध्यान रखो एर टावर टीकर जगह सगला है बै गर्मी से बचो लिखण आला है सादुल शहर से राम कुमार रिवाड़ एर आंगे परिवार का लोग गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से हूँ क्रियांश बगड़िया।

ओमबगड़िया रजत एर बेबी गरिमा मेल आपन मांडेसा गांव जाखोद राजस्थान से हूँ संबुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक एर आंगा साथी नौहरन मानगढ़ से हूँ नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमा सुथार बेटी सुचित्रा एर मोनिका सुथार लिखे प्रोग्राम चोखो लगे सा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी सेवन्या गोस्वामी किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी गांव मेलाना बावड़ी जोधपुर से छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता अरफुली देवी मेघवाल चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा माणकसर से महेंद्र शेखावत पुनित पंचारिया जका साथी गोरबंद सूरतगढ़ सुनन लाग रहे बन मारा मोकला सारा राम राम वासा दारा भाई थारा रामा श्यामा तो पहुंचना ही है। गांव बनवाला हनवंता फाजिल का पंजाब से विनोद माइल सीमा लक्षिता यशिका माँ विद्या देवी एरपुरो माइल परिवार ऊन मंडी बीकानेर से हूँ जितेंद्र रिंटोड़ एरांगा साथी कार्यक्रम सुन लाग रही है गीत गी फरमाइश भेजिए टेम थोड़ो रही वैसा आपा अगले कार्यक्रम में थाने जरूर सुना सा। लारलो कार्यक्रम सुनो बहुत ही अच्छो लाग्यो मांडे आपा ने कवाई सालपुरा बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षिता एर अभिषेक श्रीवास्तव चलता चलता सुना ओके okay।

चक 5 MD पत्रोड़ा राजस्थान से हूँ। मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुश जनागल इंदु एर, डॉक्टर सुनील जनागल, गीत के माने चोखो लागो एर, गांव नलोई शिवामनी मंडी इंसार से हूँ। सज्जन जांगड़ा, राजवाला, नवीन मंदी, प्रियंका सपना एर आंगे परिवार गलो। अबे श्रीपाल ने सीख देव सा, राम राम सा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों लोक भजनों का फरमाइशी साप्ताहिक कार्यक्रम गौरबंद, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने कार्यक्रम गीत गंगा। कि लोग कहते हैं तू अभी भी खपा है मुझसे, लोग कहते हैं तू अभी भी खपा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। नमस्कार, कार्यक्रम गीत गंगा का आगाज

बाबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मेल आपके हम तक पहुंच रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपकी फरमाइश से। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन अंसारी और शमसुल कमर राही। टाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो विनोद खां, मुखराम जी आरिफ खां, यान खां,

अरशद खां और अरमान खां, फाजिलका रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, गांव फरासी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, गौहरदन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिदान खुराना, जसपुर उत्तराखंड से रियाकत हुसैन सद्दीकी, नाजमा बेगम सद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहम्मद, रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान, पारस फिल्म के गीत की फरमाइश के साथ हमें लिखा है सादुल सैर से राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड ने। नमस्कार गीत गंगा के साथ हमें लिखते हैं नौहर हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, बठिंडा रोड डबावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, हमराज फिल्म के गीत की फरमाइश लिख के भेजी है हमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिसानी और निमित आहूजा ने, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और गुड्डू, नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवाणकर, निर्मला नवाणकर, विशाल नवाणकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरेकर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, गांव खारिया सरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंद्रा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया, कोई भी गीत में हमारा मेल आप शामिल करें, जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सवाहत, कीरत हुजरे, रेहान शेख, अनिल गौरव मानसी, कविता अरोड़ा, नई दिल्ली मोतीनगर से, लोगट ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, अर्निमान शर्मा, व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, फाजिलका पंजाब से यमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और उनके परिवार के लोग, पद्मा टोकिस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार और इनके साथी, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सारण, मोनिका और मनीष सारण, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू, जनकपुरी सहनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव, गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र रीडन, शकीला रीडन, संदीप अनवर, अकू बावरा और इनके साथी, नई आबादी हनुमानगढ़ राजस्थान से सुल्तान सिंह तर्ड, कृष्ण मुकेश तर्ड, रामचंद्र तर्ड, कपिल देव तर्ड, हिमानी जाखड़, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और इनके साथी,

बैरवाला खुर्द सरसा हरियाणा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, इमानी जाखड़, स्वयं जाखड़ और इनके साथी, गांव गमड़िया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति सरिता, तमन्ना सचिन, विष्णु स्वयं ढोकिया, एवं धारणिया, 5 BMPM केकरवाली जोड़ी से अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू और इनके साथी, नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा, चकाठतर एलन से डॉक्टर विचित्र सिंह और अरविंदर सिंह, बांडी वाले फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत बेबी गरिमा बगड़िया, आइए सुनवाते हैं आप सभी को ये गीत।

प्रेम कहानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पसंद आप सभी की। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाभली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल और इनके साथी लिखते हैं कि कार्यक्रम गीत गंगा हम लाइव सुन रहे हैं, गीत की फरमाइश बिल्कुल आपकी पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, लोकेलाल वर्मा। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान और इनके साथी। डब्बावाली से वसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। बहलोल नगर से हरी शहरी, जगतार जैरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर और इनके साथी। गांव हिपरसोगा ओसा लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा, बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। बोड़खेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाटा और इनके साथी। चंडीगढ़ से धनराज बांबू, सोहन जी चांगिड़, चेतन जी सारस्वा, राजेंद्र कासनिया। कोई भी गीत में आप हमारी फरमाइश शामिल करें ऐसा इन्होंने लिखा है। नई बस्ती गंज डुंडवारा से यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तोसीम हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीर अंसारी। तेलंगाना निजामाबाद से शेखुल्ला बख्श, शेख राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके साथी। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके साथी। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हेपी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। नमस्ते के साथ प्रोग्राम की बढ़ाई इन्होंने लिखी है। गीत गंगा कार्यक्रम का कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं, लिख के भेजा है। बीकानेर से रानी झाम और बिट्टू झाम ने। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा निहारी, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। अलीकांडा बवाली से रूप सिंह लाखोत्रा, करमजीत लाखोत्रा, सर्वजीत लाखोत्रा, रानी सोनू, रजनी, गौरव और महक। खेल बाजार पानीपत से नरेंद्र, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और इनके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप कक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साहनी और श्रीमती सुनीता साहनी।

गांव वाराण से डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला सोनू ममता, दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल। अनूप शहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन कुमार, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, रामपुरा मटोरिया से 14 BPN से महावीर लोहरा, हितेंद्र दास आसाम से हमें लिखते हैं, कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनब अब्बासी, यसफ अब्बासी, रसीद वारसी और सुहेल हसन अब्बासी। अनारकली बाज़ार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके साथी। होडू बालोत्रा से उम्मेदाराम सुरेश कुमार, सुरतेश गोदारा और इनके साथी। अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन।

राम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुत्सा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और इनके साथी, होडू बालोत्रा से उम्मेदाराम सुरेश कुमार, सुरतेश गोदारा और इनके साथी, अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनब अब्बासी, यसफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी, इशरत अब्बासी, जाखोद राजस्थान से संबुदयाल खटक, विमला देवी खटक, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक, बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत कौर, शबद सिंह राहुल, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का, लाल खां ढाणी से मास्टर मुकेश सुथार, कृष्णा बबीता, रविंद्र महेंद्र, अशोक और गौरव, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीयू सोनकार, गांव उगाला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के लोग। आइए सुने ये गीत।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, आवाज़ थी किशोर कुमार की, फिल्म का नाम था आराधना। चोटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, माणकसर से महेंद्र शेखावत, गुड्डू और पुनीत पंचारिया, राज्यसर से प्रेम कुमार लेगा, जसराम सार्द, योगेश खांदड़िया, अनिल खांदड़िया, गांव चैनपुरा धोरी मन्ना बालोतरा से जगदीश भारती गोस्वामी, विजय भारती गोस्वामी, नरेश भारती गोस्वामी, मलिता गोस्वामी और इनके साथी, बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायलसीमा, लक्षिता यसिका, विद्या देवी और इनके साथी, ओनमंडी बीकानेर से जितेंद्र रिंटोड़ और इनके परिवार के लोग, कविता शर्मा कोटा से, शिवपुरी से मोनिका जैन, भूपेंद्र सिंह सुथार संगरिया हनुमानगढ़ से, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षिता खुशी गोस्वामी, चक 15 PS से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोशन, वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन, चक 78 एलन से डॉक्टर विचित्र सिंह और पोत्रा अरविंदर सिंह,

फरमाइश हमें लिख के भेजी है जोधपुर से अलादीन दुंदाटवी ने। मेल हम तक पहुंचे हैं, हनुमान तिवाड़ी, अंजुबाला, दीक्षा तिवाड़ी, राकेश पारिक, रेखा पारिक, रितु, कार्तिक पारिक और युविका पारिक। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किन खुराना, लव्य खुराना, आरव खुराना, SK पप्पी। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज, बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन सिक्का। गांधीनगर गुजरात से GK परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष। रामपुरा मटोरिया से मुरारीलाल शर्मा, अमन रमन, तनिषा, रवि।

शर्मा, सीताराम मदन लाल शर्मा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, बीड शहर से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय टोल पीबी कुल थे, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके साथी, संगरिया से गोवर्धन दास, कृष्णा देवी, योगेश, मनीष, माही, केदार, चित्रा, भद्रा और इनके साथी, धरोंडा करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी जयजान और इनके साथी, सुल्ताना जैसलमेर से विकास जाखड़, भावना जाखड़, हेमंत जाखड़, तेज प्रताप जाखड़, वान्या जाखड़, अभिमन्यु जाखड़, शेरी विनोद सिंपा और इनके साथी, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्य गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर, अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चनाताई गोडाने, हीरावण सेंडे, पर्ण्य प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडाने। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी और ईशान सैनी। किराजवाला पीलीबंगा राजस्थान से रियान सिंवर और 5KD रावला से अयान गोदारा। लिखमिसर खरलियां पीलीबंगा हनुमानगढ़ से सुभाष मंडा, सोनू मोनू, साहिल मंडा, रियान सिंवर। डाबला रायसिंह नगर से अभय गोदारा। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और इनके साथी। सालर पहलगाम कश्मीर से प्रेजता, मिराजुद्दीन और इनके साथी। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखी देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अनिरुद्ध, गुड़िया रानी, गुड्डू कुमार गुप्ता और इनके साथी। अमाखोड़ा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्षप्रिया और गीत सरगम नेतान। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बोहिमाक्ष। किशनगंज बिहार से रविंदर मोहनदास और आशा देवी। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये मेल हम तक पहुंचा है गांव कल्याण मलका बठिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दोस्ती फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की पसंद पर, गांव कल्याण मलका बठिंडा से अमृतपाल सिंह और इनके साथी जोरड ढाणी, बहलोल नगर से नरेंद्र जोरड़, भीमसेन जोरड़, लोकेश जोरड़, गौरव जोरड़, पुनीता जोरड़ और आरवी जोरड़। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु और इनके साथी।

सदर बाजार, मारवाड़, बिलाड़ा, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विशाल इंदौरा, गैरी इंदौरा, बेबी दिव्या इंदौरा और इनके साथी। अल्पना मदान झा, मानव मयंक, मेल हमें लिखते हैं। गुजरात से ये मेल हम तक पहुंचा है। गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी का, राजगढ़ मध्य प्रदेश से मेल हमें इन्होंने लिखा है। मालवा रेडियो श्रोता संघ आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, बलवंत कुमार वर्मा। राजसिंह नगर से सोहन लाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, संजय रवि, सुनील, मनोज, शिव प्रकाश, धनराज बांबू। लिखते हैं प्रोग्राम हम लाइव सुन रहे हैं, बेहद पसंद आया। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सदीकी, नाजमा बेगम सदीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले। कपासहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आंसू अहमद फुलवाले और इनके परिवार के लोग। वाडी खांगवाम से अनंता वाडी, रामेश्वर वाडी, शुभम साक्षी खुशी और इनके साथी।

गांव गोविंदगढ़ मांझी वाला कर्णपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जिन्नू मन्नू शिव सेठी कर्णपुरी, इस्माइल टुटेजा और पवन गुर्जर, गांव 34 STG पीलीबंगा से प्रेमी बिशन लाल मेहरा, अमन समीर और रितु मेहरा, चालकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर और अम्बा चाहल, अस्तपुरा मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

हमराज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, पत्र हमारे तक पहुँचे हैं, गीदड़वाह पंजाब से मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी हिनाशा, पदमपुर से पवन तनेजा, योगेश तनेजा, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, बठिंडा रोड डब्बावाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मिका बिरक, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा साइना, अनमोल, गुरचरण ग्रोवर, विवान रूप सिंह लाठी, आकाशवाणी श्रोता संघ से रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णुदेव सोलंकी, राजवीर सोलंकी, रमन राठौड़, जस्सू पवार, जगवीर सोलंकी और इनके परिवार के लोग, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा और इनके साथी, मक्कू पंजाब से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी, मुनीस बजाज, कनेरा मोहला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता।

मंडी गोलवाला से बिरजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कभी खामोश बैठोगे कभी गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा जितना मुझे भुलाओगे। मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कहीं पर भी रहे हम तुम, कहीं पर भी रहे हम तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। श्रीपाल को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गंगा। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम

0: परिणामलक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border,